श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने,

सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा की पोषण माह के इस खास अवसर पर आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत रहने वाली है बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में। श्रोता साथियों, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि खेल, शारीरिक गतिविधियाँ, अनुशासन और अच्छी आदतें भी जरूरी होती है। तो आज जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में के माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में। इस विषय को समझने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं स्काउट गाइड, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से स्काउट गाइड की गतिविधियों के साथ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का किस तरीके से संबंध है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की बातचीत को। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी।
0: तो सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मैं डॉक्टर दीपेश शर्मा सीओ स्काउट हूँ, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड, जिला मुखलवासवाड़ा, पूरा जिला इसकी स्काउटिंग के अंतर्गत देखता रहता हूँ।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्काउट गाइड की गतिविधियों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जो चीजें होती हैं उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि स्काउट गाइड की गतिविधि में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान कैसे रखा जा सकता है।
1: मैडम अपन स्काउटिंग की अगर बात करते हैं तो स्काउटिंग में जो भी बेसिकली बात होती है, क्योंकि स्काउटिंग जो है वो कबूल बुल से लेके रो रेंजर और फिर एडल्ट लीडर, यानी जब तक आदमी स्थिति पर है तब तक के लिए वो स्काउटिंग करता रहे, तो इन चार चीजों को देखते हुए करते हैं कि चरित्र, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सेवा। तो उसमें एक विषय आज जैसा आपका स्वास्थ्य है, तो स्काउट गाइड गतिविधियों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का कितना महत्व है, यह प्रश्न था। स्वास्थ्य और पोषण मैडम अपन देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की नींव है।
0: बिल्कुल।
1: और स्काउट गाइड की अधिकांश गतिविधियां जो भी हैं, जिसमें हाइकिंग हो, कैंपिंग हो, ड्रिल हो गई, ट्रेकिंग हो गई, ये सब चीजें वो हैं जिनमें मैदानी खेल और अत्यधिक शारीरिक श्रम की मांग ये करती हैं। यदि बच्चे का पोषण सही होगा तो वो सब चीजें कर पाएगा, नहीं तो वो जल्दी थकान की और थकने लग जाएगी, उसका ध्यान भटकेगा, गतिविधियों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए पोषण तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि पोषण की आवश्यकता बच्चों को रहती रहती है। बच्चों में सहन शक्ति इससे बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बच्चा खेल से ही बन पाता है।
0: बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य से बन पाता है। जी
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पोषण का महत्व हर गतिविधि में होता है, यही जो बच्चे नियमित रूप से गतिविधियां करते हैं उनके भोजन में किन चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है।
1: मैडम अगर बच्चा नियमित रूप से खेल को या फिर यूं कह सकते हैं कि इन चीजों में नियमित रूप से अगर भाग लेता है तो उसके पोषण में सबसे पहली जो चीज है उसकी डाइट, डाइट को देखने की पर्याप्त आवश्यकता है। और जिस क्षेत्र में अपन बात कर रहे हैं बांसवाड़ा में, तो यहाँ अधिकांश ये देखा जाता है कि यहाँ कुपोषण का काफी रहता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उनको मिले, ऊर्जा के लिए उनको रोटी, दलिया, चावल, आलू इत्यादि सब्जियां वो कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से लें। प्रोटीन में मांसपेशियों की मरम्मत या मजबूती के लिए अपन कह सकते हैं कि दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीजें वो लें। क्योंकि यहाँ अपन जब देखते हैं तो पशुधन तो है लेकिन बच्चे आज भी जैसे हमारे यहाँ कैंपों में इनमें बच्चे आते हैं तो दूध को अवॉइड करते हैं, दलिया अपन उनको दे तो उसको अवॉइड करते हैं, हरी सब्जियां हरी अपन दे तो उसको अवॉइड करते हैं। तो ये चीजें काफी चीजें हैं जो उनको आवश्यकता है, उनको लेना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स के लिए अपन बात करें क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी बढ़ेगी जब आदमी हरी सब्जियां लेगा, मौसमी फल वगैरह ये चीजें लेगा। आज अपन देखते हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग रोटी सब्जी जरूर खा रहे हैं लेकिन वो इस हिसाब से नहीं खा रहे कि सब्जियां क्या होनी चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हरी सब्जियों के साथ में फल वगैरह वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस तरह की काफी चीजें हैं।
0: बिल्कुल।
1: लिक्विड में भी अपन बात करें तो ना वो पानी पूरा पी पा रहे हैं, ना छाछ पीते हैं, ना गर्मियों के टाइम पे कोई शिकंजी वगैरह या नारियल पानी वगैरह, जिस तरह की चीजें अपन सब लोग ध्यान में रखते हैं वो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और यहाँ एक चीज अपन ये भी देख सकते हैं कि खाना भी टाइम पे नहीं खाते हैं, तो समय पर भोजन अगर नहीं करेंगे तो खाली पेट किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होती और ना पौष्टिक खाना मिल पाता है ना फिर वो भोजन की उसकी पूर्ति हो पाती है।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो क्या अच्छा पोषण बच्चों को शारीरिक गतिविधि के लिए ज्यादा ऊर्जा देता है?
1: बिल्कुल मैडम, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर भोजन शरीर के लिए फ्यूल का काम कर रहा है, गाड़ी में अगर अच्छा पेट्रोल होगा, अच्छा ईंधन होगा तो गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। ठीक वैसे ही अगर शरीर में बच्चा कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट, प्रोटीन वगैरह अगर ढंग से लेगा तो उसकी शारीरिक ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, कुशलतापूर्वक वो काम कर पाएगा, संतुलित पोषण से बच्चों का स्टेमिना बढ़ता है, लंबे समय तक वो सक्रिय रह सकते हैं, थकावट, चक्कर आना, इन तरह की समस्याओं से वो दूर रहेगा।
0: बिल्कुल। तो सर स्काउट गाइड की जो आउटडोर गतिविधियां होती है उस दौरान बच्चे के खाने पीने की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: आउटडोर गतिविधियां मैडम हमारे जो बेसिकली रहती हैं उसमें एक तो कैंपिंग होता है और हाइकिंग होता है। इस दौरान बच्चा थोड़ा सा आउट ही रहता है, नहीं बच्चा बाहर ही रहता है, तो इसमें हम लोग जो बेसिकली ध्यान रखते हैं कि उसको हल्का और पौष्टिक भोजन मिले, जिसको पचने में आसानी से और कम ऊर्जा में वो चीजें पच सके, जैसे भुने हुए चने, गुड़ दे दिया उनको, सूखे मेवे वगैरह दे दिया, वगैरह शाम को जैसे चाय के साथ में, स्नैक्स के साथ में उनको फ्रूट्स वगैरह दे दिया, ताजा और सुरक्षित भोजन उनको मिले। ये चीज हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लो अपन अमूमन क्या करते हैं, घरों में जब अपन रहते हैं तो जैसे शाम को कोई रोटी या कुछ घर में बच गया तो उसको अपन सवेरे छाछ वगैरह के साथ खा लेते हैं, लेकिन कैंपों में और इस तरह की चीजों में हम लोग उनको अवॉइड करते हैं कि जिस टाइम का खाना बना वो उसी टाइम पे काम में आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाइड्रेशन के लिए उसको साफ पानी पीता रहे, बच्चों को बार बार कहा जाता है कि आप पानी की बोतल साथ में रखें, पानी बच्चा खुद पीता रहेगा और खुद पानी पिएगा तो उससे वो ठीक भी रहता है। और जंक फूड वगैरह से इनसे परहेज करें, जहां भी कैंपिंग होती है आसपास में ये ध्यान हम जरूर रखते हैं कि आसपास में कोई दुकान वगैरह शॉप वगैरह नहीं हो, क्योंकि आजकल की जो भी पीढ़ी है वो पैकिंग फूड खाने का शौक रखती है तो वो शरीर के लिए इतना लाभदायक नहीं जितना अपन ताजा और स्वच्छ बना हुआ जो अपन लेते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है।
0: बिल्कुल। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि गाँव में मिलने वाले स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए कितने उपयोगी है।
1: मैडम गाँव का मैं यूँ कह सकता हूँ रहन सहन और खान पीन दोनों ही देखा जाए तो पौष्टिक भी है और वहाँ शुद्ध भी मिलता है। पारंपरिक खाद्यान्नों में जैसे मक्का हो गया, इधर की साइड में तो अपन मक्के की बात कर सकते हैं कि मक्का हो गया, सत्तू वगैरह या गुड़ वगैरह या इस तरह का चीजें ले सकता है, मोरिंगा, आंवला, गवारफली, इस तरह की जो चीजें हैं इनसे भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं। ये चीजें खाए तो आदमी ठीक रहता है, तरोताजा रहेगा, रसायन मुक्त रहेगा, क्योंकि अपन देखेंगे कि जितनी भी अब आजकल बन रही है सब्जियां वगैरह जो अपन उगा रहे हैं वो प्रेस्टीज वगैरह उसमें डाल रहे हैं, वो रासायनिक उससे हो रहा है। कोशिश करें कि गांव में ये क्या चीजें शुद्ध मिलती है तो वहाँ ज्यादा ठीक रहता है।
0: बिल्कुल। तो सर क्या स्काउट गाइड की गतिविधि के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए चीजें सिखाई जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल मैडम, ये उनको अपन जैसे स्काउट गाइड में एक होता है कुकरी बेज, कुकिंग बेज जिसको अपन बोलते हैं, उसमें द्वितीय सोपान के लेवल पे ये चीज आ जाती है। उसमें बच्चों को पूरा उसका जो सिलेबस होता है, कंटेंट जो होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं कि आपके संतुलित थाली क्या होगा, संतुलित थाली में आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, खाना कैसे बनेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि जैसे भले ही वो चपाती बना रहा है लेकिन वो बनाने के दौरान भी अगर उसको ज्यादा पकाएगा तो चपाती में जो पोषकता है वो खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही सब्जी को अगर वो ज्यादा उबाल लेगा तो उससे वो खत्म होगा। तो ये सारी चीजें उसमें रहती है। तो बच्चा वो कुकिंग बेस लगभग सभी लोग लेते हैं, यूं मान के चलें अपन कि आप यूं मान के चलें कि लगभग 60-70% बच्चे कुकिंग बेस वगैरह लेते ही लेते हैं, तो उसमें वो सब चीजें सीख पाता है।
0: बिल्कुल। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कमजोर जो बच्चे होते हैं, कम वजन वाले, उनकी गतिविधियों में जब हम उन्हें शामिल करते हैं तो किन बातों का विशेष हम उन्हें ध्यान रख पाते हैं?
1: फिजिकली फिटनेस जरूर मैडम ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई कमजोर बच्चा हो और उसको अपन ज्यादा टफ टास्क दे देंगे तो वो उस चीज को नहीं कर पाता है। तो हम ध्यान रखते हैं कि उसकी धीमी शुरुआत हो, उन पर अचानक बहुत अधिक शारीरिक दबाव नहीं डाला जाए, गतिविधियों में तीव्रता धीरे धीरे उसके हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत उस पर ध्यान देना पड़ता है, जो भी इंस्ट्रक्टर या जो परीक्षक होता है उसको कह दिया जाता है कि इस तरह के बच्चे की जो भी है उनको आप अलग से चिन्हित करें और उनका खान पीन भी थोड़ा सा चेंज करें और उनको बार बार मोटिवेशन देते रहें। कई बार बच्चा खड़े खड़े थकने लग जाता है या हाइक में जाता है और वहां थकने लग जाता है तो उसको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि इतनी दूर तो अपन आ गए, अब तो थोड़ा सा ही रहा है, थोड़ा और चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। इस तरह से उसको मेंटली अपन सपोर्ट करेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे वो लोग कर लेते हैं। और अंत में अगर कोई ज्यादा ही इस तरह का मामला हो कि बच्चा बार बार थक रहा है या इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कोशिश ये भी की जाती है कि डॉक्टर्स वगैरह को बता दिया जाता है या उन बच्चों को भी कह दिया जाता है कि बेटा आप जाने के बाद में जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है वहाँ एक बार आप थोड़ा सा जरूर दिखाएं ताकि उनको डॉक्टर्स वगैरह का भी परामर्श वगैरह मिल सके।
0: बिल्कुल। यही सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि लड़कियों के अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्काउट गाइड जैसी गतिविधियाँ कैसे मददगार हो सकती हैं?
1: यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो मैडम मैंने लगभग मेरे 15 साल के सर्विस पीरियड में देखी है कि यहाँ बच्चियों में कुपोषण ज्यादा है। यहाँ आए दिन पेपर के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से ये सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिलता है कि 2-3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, कई बार माँ को भी संकट रहता है, बच्चे की भी डेथ हो जाती है, कई तरह की समस्याएं हैं। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा जब भी कोई कैंप वगैरह रहता है तो कोशिश की जाती है कि फीमेल स्टाफ के माध्यम से उनको वो तरह सब तरह की चीजें समझाई जाए और उनको बताया जाए कि एनीमिया में जो खून की कमी रहती है उसको कैसे अपन बचा जा सकता है। स्काउट गाइड की जो बैठकें होती हैं उनमें पोषण संबंधी जागरूकता और आयरन से संबंधित भरपूर भोजन के लिए उनको बताया जाता है। शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए उनको आउटडोर गतिविधियों में लड़कियों का भी शारीरिक स्टेमिना और आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता बढ़ सके, ये चीजें उनको बताई जाती है। स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए उनको जो भी मासिक धर्म वगैरह जो है उसमें किस प्रकार से वो अपना ध्यान रखें, किस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखें, उसके बाद में उनको क्या खान पीन में चीजें ऐड करनी है, वो सब चीजें उनको बताई जाती है। और जो बेसिकली जिसपे काम किया जाता है वो है यहाँ रूढ़िवादिता को तोड़ना, क्योंकि एक जनरली थिंकिंग है कि लड़कियां लड़कों के समान मैदानी और चुनौती पूर्ण काम नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ की सबसे बड़ी एक समस्या है। उनको बताया जाता है कि बेटा जब लड़कियां राष्ट्रपति बन सकती हैं, राज्यपाल बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो क्यों नहीं आप लड़कों के बराबर खड़ी हो सकती हैं, ऐसा करके उनको मेंटली भी मोटिवेट किया जाता है।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो माता पिता बच्चों के पोषण और शारीरिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में किस तरीके से घर पर चीजों का ध्यान रख सकते हैं?
1: इसमें मैडम मैं यूं कह सकता हूँ कि यहाँ अपने बांसवाड़ा के लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा शिक्षा का भाव है, जो पुरानी पीढ़ी थी उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा का भाव रहा और उसका खामियाजा अभी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल में या अपने पास में या स्काउटिंग में बाद में आएगा, उसकी जो पहली आवश्यकता है वो परिवार है, और अगर माता पिता शिक्षित होंगे, माता पिता को अगर जानकारी होगी तो वो सब चीजें बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी लड़की हो या लड़का हो उसका पहला रोल मॉडल उसकी मम्मी या पापा होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: घर का बना ताजा खाना उन बच्चों को दे, उनको बार बार बताएं कि बेटा बाहर की चीजें आपको नहीं खानी है, रंग बिरंगी थैलियों में दिखने वाली चीजें केवल मन को आकर्षित करती हैं लेकिन शरीर के लिए इतनी पौष्टिक नहीं है, उनको कोशिश ये भी करें, ये वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि अपन स्वास्थ्य पे ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन अभी स्क्रीन टाइम सबका काफी ज्यादा हो रहा है। ये चीज भले अपन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी देख लें आप लोग, या जो भी जहां भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, स्क्रीन टाइम काफी हो रहा है, लेकिन वो तो चलो ऑफिशियल कामों से कर रहे होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, और इसमें माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज बच्चा थोड़ा सा भी रोने लगता है तो मम्मी पापा उसको तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कोशिश करें कि उनकी स्क्रीन टाइमिंग करें जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो आराम से उस चीज के लिए देख सके। भोजन का भी एक समय उनका निर्धारित हो कि इतनी बजे उनको नाश्ता देना है, इतनी बजे खाना देना है, क्योंकि ये आदतें जो है वो एक बार बन जाती है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ में चलेंगी और वो बच्चा अपने परिवार के साथ में ठीक ठाक से रह पाएगा।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवाया है, तो यही अंत में बच्चों और अभिभावकों के लिए आप पोषण और स्वास्थ्य को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है, काफी बार पढ़ा है लेकिन देखने को काफी कम मिलता है, क्योंकि अगर इस पे अपन काम करेंगे तो ये चीजें हो पाएंगी। और बच्चों के लिए संदेश सीधा यही है कि मोबाइल और स्क्रीन की इस दुनिया से बाहर निकलें, मैदान में उतरें, खेलें और पसीना बहाएं, जंक फूड की जगह अपनी पारंपरिक थाली फल और दूध दही को अपनाएं, आज की आपकी शारीरिक सक्रियता और सही पोषण ही कल आपके उज्ज्वल सफल और ऊर्जावान भविष्य की नींव है। और अभिभावकों के लिए मेरा निवेदन होगा, संदेश तो क्या कि बच्चों का असली विकास केवल किताबों और अंकों, क्योंकि अपन देखते हैं कि आज केवल मार्कशीट से बच्चों का आकलन हो रहा है,
0: जी जी।
1: तो उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों का असली विकास केवल किताबों और अंकों से नहीं बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। उन्हें घर का शुद्ध स्थानीय पौष्टिक आहार दें, उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और स्काउट गाइड जैसे मूल्य आधारित गतिविधियों से जोड़ें, बच्चों को एक सक्रिय अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली का उपहार दें ताकि वो जीवन में आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और जीवन में व्यस्त रहें।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: मैडम, आपके माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा, इससे न केवल स्काउटिंग बल्कि बांसवाड़ा ग्रामीण उसमें बच्चों के और बच्चियों के दोनों के लिए स्वास्थ्य पे भी इसका काफी अच्छा असर होगा। धन्यवाद आपका।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि बच्चों का अच्छा पोषण और उनकी सक्रियता दोनों उनके स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है। पौष्टिक भोजन बच्चों को ऊर्जा देता है, वहीं गतिविधियां उन्हें सक्रिय, आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने में मदद करती हैं। इसलिए बच्चों की थाली में पौष्टिक भोजन के साथ उनकी दिनचर्या में थोड़ा सा समय खेल, गतिविधियों और प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए भी जरूर रखें। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है, प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में भी असरदार होती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हर चीज बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटी सी बात भी दिल में बड़ी जगह बना लेती है। प्यार थोड़ा हो लेकिन सच्चा हो, कोशिश छोटी हो लेकिन लगातार हो, और अच्छाई छोटी हो लेकिन दिल से हो, तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहना चाहेंगे साथियों कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, समाज में बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जिंदगी में सफल होने के लिए रोज घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में कई बार बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी छोटी चीजें अपना असर छोड़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले बातचीत की शुरुआत कर चुके हैं साथियों, और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में ही असरदार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि खुश करने के लिए हमें लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम किसी कार्य में मन लगाना चाहते हैं या किसी नई उपलब्धि को पाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन वास्तविक जीवन में ये सच नहीं है दोस्तों। कई बार किसी उदास इंसान से बस इतना पूछ लेना कि तुम ठीक हो, किसी थके हुए व्यक्ति से ये कह देना कि तुम आराम कर लो, मैं यह काम कर देता हूँ, माता पिता को बिना किसी खास मौके के धन्यवाद कहना, दोस्त की बात बिना बीच में टोके सुन लेना, और किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी मदद कर देना, जागृति जी, ये सभी चीजें बहुत असर करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर दिन अपने लक्ष्य के लिए बस थोड़ा सा समय निकालना, ये चीजें देखने में तो काफी छोटी है लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि प्यार को हमेशा बड़े बड़े शब्दों, महंगे उपहारों या बड़े वादों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असली प्यार अक्सर बहुत साधारण चीजों में भी दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं है श्रोताओं कि हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी कभी किसी की बात को ध्यान से सुन लेना भी प्यार है, किसी की परेशानी समझने की कोशिश करना भी प्यार है, गलती होने पर माफ कर देना, किसी की सफलता पर दिल से खुश होना और मुश्किल समय में उसका साथ देना, ये सभी प्यार के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली रूप है।
0: जी हाँ,
1: युवाओं के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्ती हो, परिवार हो, भाई बहन का रिश्ता हो या समाज के साथ जुड़ाव का रिश्ता, कशिश हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े प्रयास की हमें जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: बस एक छोटा सा संदेश कि अपना ख्याल रखना किसी के पूरे दिन को बेहतर बना सकता है श्रोताओं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही कभी एक फोन कॉल किसी को यह महसूस करा सकता है कि हम अकेले नहीं हैं।
1: जी हाँ,
0: कभी किसी की उपलब्धि पर कहा गया एक छोटा सा शब्द कि मुझे तुम पर गर्व है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो रिश्तों में गहराई लाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें कोई बड़ा काम करना होगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़े स्तरों से हो ये जरूरी नहीं होता जागृति जी।
1: जी हाँ,
0: अगर हमारे युवा साथी अपने घर के आसपास कचरा नहीं फैलाते हैं तो यह भी पर्यावरण के लिए एक योगदान है उनके द्वारा। अगर वह अपने दोस्तों को कचरा सही जगह डालने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह भी उनके द्वारा एक कदम आगे बढ़ना है दोस्तों।
1: जी हाँ,
0: अगर वह किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अपनी पुरानी किताबें दे देते हैं तो ये भी समाज के लिए एक अच्छी पहल है।
1: बिल्कुल,
0: अगर वह किसी बुजुर्ग की सड़क पार करने में मदद करते हैं और किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या किसी परेशान व्यक्ति को कुछ मिनट ध्यान से सुन लेते हैं दोस्तों, तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हमारी अच्छाई बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमारे युवा साथियों को ये याद रखना चाहिए कि अच्छाई कभी छोटी नहीं होती। हमारा छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा जीवन सपनों, उत्साह और संभावनाओं से भरा होता है, ये हम सभी जानते हैं। श्रोताओं, इस उम्र में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई समाज के लिए काम करना चाहता है, तो कोई अपनी प्रतिभा को पहचान बनाना चाहता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कई बार बड़े लक्ष्य हमें डरा देते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा सपना है, मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगी या कर पाऊंगा।
0: जी जी,
1: यहीं पर छोटी छोटी कोशिशों की ताकत सामने आती है श्रोताओं। अगर हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो रोज सिर्फ कुछ नए शब्द हमें सीखने होंगे। अगर हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत कुछ पन्नों से करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमें कोई कौशल सीखना है तो रोज थोड़ा समय देना होगा। अगर हमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो एक साथ पूरी किताब देखकर घबराने के बजाय रोज एक छोटा सा लक्ष्य तय करना होगा, क्योंकि पहाड़ भी एक एक कदम चलकर पार किया जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें कर ही रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में ही अच्छी लगती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे करते रहेंगे और भी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में भी असरदार होती है विषय को लेकर। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि छोटी मात्रा में प्यार भी दिल को भर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम जान पा रहे थे कशिश की अच्छाई की मात्रा नहीं नीयत हमारे सामने मायने रखती है। युवाओं के लिए छोटी कोशिशों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ जानते हैं कि 1% सुधार भी बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपने जीवन में अक्सर अचानक बड़ा बदलाव चाहते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज से सब कुछ बदल जाएगा, आज से मैं पूरी तरह अनुशासित रहूंगा या रहूंगी, आज से मैं कई घंटों पढ़ाई करूंगा और आज से मैं अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसे कुछ बातें हैं जो वो हमारे मन में चलती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरी है कि हम अपने ऊपर असंभव दबाव डालने के बजाय छोटे और लगातार सुधार पर ध्यान दें। जैसे कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ, आज एक अच्छी आदत सीखने का प्रयास करूंगा या करूंगी, आज एक गलत आदत को थोड़ा कम करना है, आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों यही छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कदम कदम से मंजिल करीब आती है।
0: जी हाँ कशिश,

0: आज जैसा कि सोशल मीडिया से हम सभी जुड़े हुए हैं,
1: जी हाँ,
0: हमारे पास बातचीत की कई साधन हैं, लेकिन कई बार वास्तविक संवाद कम हो रहा है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: हम किसी की फोटो पर लाइक कर देते हैं लेकिन ये नहीं पूछते कि वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। हम किसी की सफलता देखकर उसे बधाई तो दे देते हैं लेकिन उसकी मेहनत समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते।
1: जी हाँ,
0: इसलिए डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी वास्तविक संवेदनशीलता बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी दोस्त की पोस्ट पर सिर्फ इमोजी भेजने के बजाय युवा साथियों कभी फोन करके ये पूछिए कि तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। हो सकता है सामने वाला सिर्फ एक बातचीत का इंतजार कर रहा हो। अच्छाई की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वह अक्सर आगे बढ़ती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा ने रास्ते में किसी व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति के मन में भी दूसरों की मदद करने की भावना पैदा हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ठीक उसी प्रकार किसी शिक्षक ने विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया तो वही विद्यार्थी आगे चलकर किसी दूसरे युवा को प्रेरित कर सकता है। जागृति जी,
1: जी हाँ, हम कह सकते हैं कशिश कि किसी ने हमें मुश्किल समय में सहारा दिया हो। हो सकता है श्रोता साथियों कि किसी और के मुश्किल समय में हम उसके लिए भी वही सहारा बन जाए। इसीलिए हमारी छोटी सी अच्छाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। अच्छाई एक ऐसी रोशनी है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि शुरुआत कौन करेगा। अपने मोहल्ले में स्वच्छता की शुरुआत कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच नशे और गलत आदतों से हम दूर रहने की बातचीत कर सकते हैं, गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए छोटी पहल कर सकते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जरूरतमंद व्यक्ति की छोटी सी मदद कर सकते हैं। कशिश, ये छोटी छोटी जो शुरुआतें होती है लेकिन जब ये हजार युवा इन्हें अपनाते हैं तो यही छोटी बातें बड़े सामाजिक बदलाव का रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हम देखते हैं कि कई युवा भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियों को भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहते हैं कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब मेरा लक्ष्य पूरा होगा तब जिंदगी का आनंद लूंगा। लेकिन जीवन केवल बड़े अवसरों का नाम नहीं है युवा साथियों। एक कप चाय के साथ परिवार से बातचीत, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सुबह की ताजी हवा, बारिश की खुशबू, किसी पसंदीदा गाने को सुनना और किसी किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, ये दोस्तों छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सुंदर बनाती है।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए कि खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो छोटी सी मुस्कान बनकर हमारे पास ही बैठी हुई होती है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, किसी को खुश करने के लिए हमेशा बड़ा उपहार जरूरी नहीं, सच्चे शब्द ही काफी होते हैं। रोज थोड़ा सीखना कभी कभी बहुत सीखने से ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: रिश्तों में बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाह ज्यादा मायने रखती है। समाज में बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े अभियान से नहीं, हमारी छोटी आदतों से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी को दिया गया प्रोत्साहन उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। हम अपने लक्ष्य की ओर रोज एक छोटा सा कदम भी बढ़ाएंगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही अच्छाई करने के लिए सही समय का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करनी है क्योंकि जिंदगी इन्हीं पलों से बनती है। हमारी एक मुस्कान, एक मदद या एक अच्छा शब्द किसी के दिन को बदल सकता है कशिश। इसलिए हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि याद रखिए श्रोताओं, असर चीज की मात्रा से नहीं उसकी सच्चाई और निरंतरता से पैदा होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज की इस बातों से हमारे युवा साथी इतना ही समझ पाए हैं कि जीवन में हर चीज का बड़ा होना जरूरी नहीं होता। प्यार थोड़ा हो लेकिन सच्चा हो, मदद छोटी हो लेकिन जरूरत के समय हो, कोशिश छोटी हो साथियों लेकिन लगातार हो, और अच्छाई छोटी हो लेकिन दिल से हो, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है आपका एक अच्छा शब्द किसी का आत्मविश्वास लौटा दे। हो सकता है दोस्तों कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाए।
1: जी हाँ,
0: और ये भी हो सकता है कि आपकी रोज की छोटी मेहनत आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जिसका आपने कभी सपना देखा होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपनी छोटी कोशिशों को कम मत समझिए क्योंकि नदी की ताकत उसकी एक बूंद में नहीं बल्कि लगातार बहती बूंदों में होती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि छोटी सी कोशिश को कभी छोटा मत समझना, छोटी सी अच्छाई को कभी व्यर्थ मत समझना, प्यार थोड़ा हो तो भी दिल से निभाना, क्योंकि जिंदगी में बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी बातों से ही मुस्कुराना सिखाती है।
0: जी हाँ,
1: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि बड़ा करने की चाह अच्छी है लेकिन छोटी शुरुआत करने से मत डरिए, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत कभी न कभी एक छोटी सी कोशिश से ही शुरू होती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बात रहने वाली है हमारी परंपराएं, हमारी विरासत संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी इमारतों, सड़कों और आधुनिक सुविधाओं से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके रीति रिवाजों, लोकगीतों, लोक कथाओं, भाषा, पहनावे, खान पान, त्योहार, कला और जीवन के तरीकों से होती है। यही परंपराएं पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती है और हमें ये एहसास कराती है कि हम कहां से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और अंजलि, जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हमारी परंपराएं, हमारी विरासत संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि ऐसे गांव की जहां लोक गीत तो है लेकिन उन्हें गाने वाला कोई न हो, जहां पारंपरिक कला तो है लेकिन उसे बनाने वाले हाथ न हो, जहां त्योहार तो मनाए जाए लेकिन उनके पीछे की परंपरा और भावना किसी को मालूम ही न हो। ऐसा समाज आधुनिक तो दिखाई दे सकता है अंजलि, लेकिन भीतर से अपनी पहचान खो चुका होता है। इसलिए हमारी परंपराएं केवल अतीत की याद नहीं दिलाती बल्कि हमारी सांस्कृतिक पूंजी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें, परंपराएं हमारी पहचान है। फिर श्रोता साथियों, परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में बड़ों का सम्मान करना, अतिथि का स्वागत करना, सामूहिक रूप से त्योहार मनाना, विवाह और अन्य सामाजिक अवसरों की परंपराएं, ये सभी हमारे सामाजिक जीवन को मजबूत बनाती है। हमारे गाँव में आज भी अनेक ऐसी परंपराएं दिखाई देती है जागृति जी, जिनमें सामूहिकता सहयोग की भावना छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: पहले किसी परिवार में कोई शुभ अवसर होता था तो पूरा पड़ोस उसके साथ खड़ा हो जाता था। खेत में काम हो, घर में समारोह हो या किसी जरूरतमंद परिवार की मदद, लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाते थे। आज हम देखते हैं कि जीवन की गति तेज हो गई है, परिवार छोटे हो रहे हैं और लोगों के पास समय कम है। ऐसे समय में उन परंपराओं को बचाना और भी जरूरी हो जाता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग क्षेत्रों के अपने लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कलाएं हैं। राजस्थान और वागड़ अंचल की बात करें तो यहाँ के लोकगीतों, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र और हस्तकलाओं में स्थानीय जीवन की सुंदर झलक दिखाई देती है। लोकगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, उनमें खेती, ऋतु, विवाह, प्रकृति, रिश्ते और सामाजिक जीवन की कहानियां छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: एक लोकगीत कई बार वो इतिहास बता देता है जो किसी किताब में दर्ज नहीं होता। इसी तरह श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि पारंपरिक कला बनाने वाले कारीगर अपने हुनर के साथ कई पीढ़ियों का अनुभव आगे बढ़ाते हैं। अगर नई पीढ़ी इन कलाओं को सीखने में रुचि नहीं लेगी तो धीरे धीरे ये कलाएं केवल संग्रहालयों तक सीमित रह सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है कि हम स्थानीय कलाकारों को मंच दे, उनके काम को सम्मान दे और उनके उत्पादों को खरीदकर उनकी कला को जीवित रखने में सहयोग करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ भाषा और बोली के संरक्षण की बात करें तो हमारी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: भाषा में हमारी संस्कृति, भावनाएं, इतिहास और सामूहिक स्मृतियां सुरक्षित रहती है। स्थानीय बोलियां किसी क्षेत्र की पहचान होती है। किसी बोली का एक शब्द कई पीढ़ियों के अनुभव को अपने भीतर समेटे होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, आज कई बच्चे अपनी स्थानीय बोली बोलने में संकोच करने लगे हैं। हमें ये समझना होगा कि अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोली बोलना पिछड़ापन नहीं बल्कि अपनी जड़ों पर गर्व करना है।
0: जी हाँ।
1: घर में बच्चों से स्थानीय भाषा में बातचीत करना, लोक कथाएं सुनाना, पारंपरिक कहावतों और लोक गीतों को सीखना, ये छोटे कदम भाषा संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि बुजुर्ग हमारी चलती फिरती विरासत है। हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के बड़े सदस्य नहीं होते, वे अनुभव और परंपराओं के जीवित स्रोत हैं।
0: जी हाँ।
1: उनके पास खेती के पुराने तरीकों, मौसम की पहचान, स्थानीय पौधे, खान पान, लोक कथाएं, गीतों, सामाजिक परंपराओं से जुड़ा ऐसा ज्ञान होता है जो किताबों में आसानी से नहीं मिलता। आज आवश्यकता है कि बच्चे और युवा अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी बातों से सुने।
0: जी
1: उनके अनुभवों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनकी कहानियों को लिखा जा सकता है और उनके पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह एक पीढ़ी का अनुभव दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता रहेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे त्योहार हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई सामाजिक, प्राकृतिक या आध्यात्मिक संदेश तो जुड़ा ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओ, त्योहार केवल नए कपड़े पहनने, मिठाई खाने या सजावट करने का अवसर नहीं होता है, ये हमें परिवार, समाज, प्रकृति और आपसी सहयोग से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जरूरत है कि हम त्योहारों की परंपराओं को समझे और उनके सकारात्मक संदेश को अगली पीढ़ी तक जरूर पहुँचाए, साथ ही पर्यावरण और समाज का ध्यान रखते हुए उत्सव मनाएं। जब त्योहार हमारी संस्कृति के साथ साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी देते हैं, तब उनका महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, आज हम जान रहे हैं हमारी परंपराएं, हमारी विरासत संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने त्योहारों की असली भावना क्या है उसके महत्व को जाना, यही बात करते हैं आधुनिकता और परंपरा में संतुलन की।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, परंपराओं को बचाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हर पुरानी चीज को बिना सोचे अपनाते रहें। समय के साथ समाज बदलता है और बदलाव जरूरी भी है। हमें अपनी परंपराओं में छिपे अच्छे मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और उन बातों को छोड़ना चाहिए जो भेदभाव, अंधविश्वास या किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है।
1: जी हाँ।
0: यानी कि जागृति जी, हमें परंपरा को जड़ता नहीं बल्कि सकारात्मक विरासत के रूप में देखना चाहिए। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम अपनी संस्कृति को और मजबूत कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: पुराने लोकगीतों की रिकॉर्डिंग, लोक कलाओं की वीडियो, बुजुर्गों की कहानियां को डिजिटल संग्रह और स्थानीय इतिहास का दस्तावेजीकरण, ये सभी हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के आधुनिक तरीके हैं।
1: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से आधुनिकता और परंपरा में संतुलन जरूरी है, यही अगर बात करें बच्चों को संस्कृति से किस तरह से जोड़ना है, युवाओं को संस्कृति से किस तरह से जोड़ना है, तो साथियों जैसा कि विरासत संरक्षण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा अगर अपनी संस्कृति को समझेंगे तो उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। हम देखते हैं अंजलि कि सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कला को नई पहचान दी जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: युवा अपने गाँव और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर छोटे वीडियो बना सकते हैं, स्थानीय कलाकारों की कहानियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप दे सकते हैं। साथ ही बच्चों की बात करें तो बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनने का अवसर मिले, वे स्थानीय लोकगीत सीखें, गांव के पुराने स्थानों और परंपराओं के बारे में जानें। साथ ही स्कूलों में स्थानीय संस्कृति पर गतिविधियां तो आयोजित होती है, तो अगर बच्चे अपनी संस्कृति को समझेंगे तो वे बड़े होकर उसे सम्मान भी देंगे और सुरक्षित भी रखेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें गाँव और समुदाय की जिम्मेदारी की, तो श्रोता साथियों, किसी भी विरासत को बचाने के लिए सामुदायिक प्रयास जरूरी है। गांव में पुराने जल स्रोत, पारंपरिक भवन, स्थानीय पेड़ पौधे, कला और सांस्कृतिक स्थल हैं, तो उनकी देखभाल सामूहिक रूप से की जानी चाहिए। गांव की बैठकों में स्थानीय विरासत पर चर्चा हो सकती है, बुजुर्गों से जानकारी लेकर उसका दस्तावेज बनाया जा सकता है, स्थानीय कलाकारों को कार्यक्रमों में मंच दिया जा सकता है। जब पूरा समुदाय अपनी विरासत को अपनी जिम्मेदारी मानता है तब संरक्षण का काम मजबूत और स्थायी बनता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति भी हमारी विरासत है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे त्योहार, लोकगीत, खेती और जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे संबंध दर्शाते हैं।
1: जी हाँ।
0: पेड़, तालाब, नदियाँ, जंगल, पहाड़ और स्थानीय जैव विविधता केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वे हमारी आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति है। इसलिए विरासत संरक्षण का अर्थ केवल गीत और कला बचाना नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति की रक्षा करना भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि विरासत को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं होती, शुरुआत तो हमें घर से ही करनी होती है। हम घर में अपनी भाषा बोले, बच्चों को अपनी परंपराओं के बारे में बताएं, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करें और पारंपरिक व्यंजनों को अगली पीढ़ी को सिखाएं। पुराने गीतों और कहानियों को रिकॉर्ड करें, जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को बताया। साथ ही गांव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों की देखभाल करें। ये जो छोटे छोटे प्रयास है वो मिलकर बड़ी विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रोताओं कहना चाहेंगे कि हमारी विरासत हमें याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए हमें अपनी जड़ों को पीछे नहीं छोड़ना है, नई तकनीक को अपनाना है, नई सोच को अपनाना है, नई दुनिया से जुड़ना है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोकगीत, अपनी कला, अपनी परंपरा और अपने मूल्यों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि जिस समाज को अपनी जड़ों का पता होता है वही अपने भविष्य की दिशा बेहतर ढंग से तय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हमारी परंपराएं किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: यह पीढ़ियों से हमें मिली जिम्मेदारी है, हमारे पूर्वजों ने इन्हें संभाल कर हमें सौंपा और अब इन्हें सुरक्षित रखना हमारी बारी है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी विरासत को केवल त्योहारों और विशेष अवसरों पर याद नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि अपने दैनिक जीवन में उनका सम्मान करेंगे। विरासत को बचाना अतीत को रोकना नहीं है बल्कि अतीत की अच्छी सीख को भविष्य तक पहुंचाना है। आज हम अपनी भाषा बोलेंगे और अपने लोकगीत गाएंगे, अपनी कला को सम्मान देंगे, बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सकेंगी कि यह हमारी पहचान है, यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी विरासत है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी विरासत को समझें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि विरासत केवल हमें मिली हुई चीज नहीं है
1: विरासत वो जिम्मेदारी है जिसे हमें संभाल कर आगे सौंपना है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी विरासत को केवल अतीत की निशानी बनाकर नहीं रखना है, बल्कि उसे वर्तमान में जीवित और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी श्रोता साथियों, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उतनी ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत रही है, आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक कोई प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। बारतीनू खवानू सोड़ो।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा कर है, तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जैवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉगर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारी, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, हमारे जीवन से जुड़े उन सवालों की जिनके जवाब कई बार हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कभी किसी ने कोई सवाल पूछा और आपको उसका जवाब नहीं पता था? शायद आपने तुरंत कुछ कह दिया होगा, शायद अंदाजा लगाकर जवाब दे दिया होगा या फिर चुप हो गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सहज होकर कहा मुझे नहीं पता? साथियों, कई लोगों के लिए ये तीन शब्द बोलना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं पता तो सामने वाला उन्हें कम समझदार मानेगा, कोई उन्हें कमजोर समझेगा, कोई अनपढ़ तो कोई अनुभवहीन। लेकिन साथियों, जरा सोचिए कि क्या हर सवाल का जवाब जानना ही समझदारी है, या यह स्वीकार कर पाना कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा, यह उससे भी बड़ी समझदारी है? तो आज के सपनों की उड़ान में हम इसी छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा करेंगे कि मुझे नहीं पता कहने में शर्म कैसी। बातें ढेर सारी होंगी लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं मुझे नहीं पता कहने में शर्म कैसी। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे समाज में अक्सर ये धारणा बन जाती है कि जो व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे दे वही ज्यादा बुद्धिमान है। कक्षा में शिक्षक ने सवाल पूछा और बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, उसे डर लगता है कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। किसी बैठक में कोई नई बात सामने आई, हमें समझ नहीं आई, फिर भी हम सिर हिला देते हैं जैसे सब समझ आ गया हो। मोबाइल में कोई नया फीचर आया, हमें चलाना नहीं आता, लेकिन हम किसी से पूछने में झिझकते हैं। किसी सरकारी योजना का नियम समझ नहीं आया, फिर भी हम पूछने के बजाय अनुमान लगा देते हैं। किसी मशीन को चलाना नहीं आता, फिर भी दूसरों के सामने पूछने में संकोच होता है। यही झिझक श्रोता साथियों कई बार हमें सीखने से रोक देती है, जबकि सच्चाई यह है कि जिसे यह पता है कि उसे क्या नहीं पता, उसके सीखने का रास्ता वहीं से शुरू होता है। एक व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे नहीं पता, तो श्रोता साथियों यकीन मानिए कि वो अपनी कमी स्वीकार नहीं कर रहा होता, वह अपने लिए सीखने का दरवाजा खोल रहा होता है। इसी के साथ अगर एक छोटी सी बात जाने तो मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी किसान को किसी नई कृषि तकनीक के बारे में बताया गया, वह तकनीक उसके लिए बिल्कुल नहीं। सामने वाला पूछता है समझ आया, अगर किसान केवल इसलिए हाँ कह देता है कि लोग उसे कम जानकारी वाला न समझे, तो हो सकता है कि वह आगे चलकर उस तकनीक को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दे। लेकिन अगर वह कहता है कि नहीं मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, तो क्या इसमें कोई शर्म की बात है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यही तो समझदारी है कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति उसी क्षण सीख रहा है। जो व्यक्ति पूछने में संकोच करता है वो अपनी अज्ञानता को छिपाता है। जो व्यक्ति पूछ लेता है वह अपनी अज्ञानता को ज्ञान में बदलने की शुरुआत करता है। कि हम देखते हैं बहुत सी बार हम सभी के साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई बात हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखकर हम सिर हिला देते हैं। हाँ, आ गई समझ में, ये वर्ड भी हम कह देते हैं। लेकिन अगर हम सवाल पूछें, उसे अच्छे से समझें, तो उस चीज का हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यही बात आती है कि बच्चों के लिए मुझे नहीं पता बहुत जरूरी क्यों है। तो श्रोता साथियों, बच्चों के जीवन में तो यह बात और भी महत्वपूर्ण है। बच्चा हर दिन कुछ नया सीखता है, उसे दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। वो पूछता है आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, पौधे बड़े कैसे होते हैं, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता दिखाई देता है, बिजली कैसे आती है। कभी कभी बड़े लोग बच्चे के सवाल पर हंस देते हैं, इतना भी नहीं पता। धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है। यही हमें सावधान होने की जरूरत है। बच्चों को यह कहने की बजाय कि तुम्हें यह भी नहीं पता, की जगह हमें कहना चाहिए कि मुझे अभी इसका पूरा जवाब नहीं पता, चलो फिर पता करते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य बच्चे के अंदर बहुत बड़ी चीज पैदा कर सकता है और उसके सीखने की हिम्मत यहीं से शुरू होती है। तो श्रोता साथियों, बातें कार्यक्रम में जैसा कि बहुत अच्छी चल रही है कि मुझे नहीं पता कहने में किस तरीके का संकोच, तो ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बड़े होने के बाद हम सवाल पूछना क्यों छोड़ देते हैं। तो श्रोता साथियों, बचपन में हम बिना झिझक पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर एक डर पैदा होने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। यही डर हमें कई जगह रोकता है। हमें रास्ता नहीं पता लेकिन पूछेंगे नहीं। किसी दस्तावेज को समझ नहीं पा रहे लेकिन पूछना नहीं है। किसी काम का तरीका नहीं आता लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। नई तकनीक समझ नहीं आई फिर भी कहेंगे हाँ आती है। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी की कमी से ज्यादा लोगों की राय का डर सताता है। लेकिन श्रोता साथियों, जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में नया होता है। श्रोता साथियों, एक किसान खेती जान सकता है लेकिन मोबाइल की नई तकनीक न जानता हो। एक युवा मोबाइल अच्छी तरह चला सकता है लेकिन खेती की बारीकी न जानता हो। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान रख सकता है लेकिन किसी मशीन की जानकारी कम हो सकती है। एक बुजुर्ग जीवन के अनुभव से बहुत कुछ जानते हैं लेकिन डिजिटल जानकारी उनके लिए नहीं हो सकती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का हर क्षेत्र में जानकार होना संभव नहीं होता है। साथियों, केवल मुझे नहीं पता कहना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद हमें कहना चाहिए कि लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता पर बात खत्म हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। फिर हम किसी जानकार से पूछ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं, किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं, विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपनी जानकारी की कमी को स्वीकार करके उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, सामुदायिक जीवन में तो सवाल पूछना और भी जरूरी है। गांव में बैठक हो रही है, किसी योजना की जानकारी दी जा रही है, किसी स्वास्थ्य विषय पर चर्चा हो रही है, खेती से संबंधित नई जानकारी दी जा रही है, बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, महिलाओं के किसी समूह में नई गतिविधि समझाई जा रही है। अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो उसे पूछना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का सवाल कई लोगों के काम आ सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सवाल शायद सिर्फ मुझे नहीं पता, बाकी सबको पता होगा, और बाद में पता चलता है कि कमरे में बैठे आधे से ज्यादा लोगों को उस बात के बारे में पता ही नहीं है, बस किसी ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए दोस्तों, एक सवाल कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरे समुदाय को जानकारी दे सकता है। यही बात करें कि गलत जवाब देने से बेहतर है कि सही सवाल पूछना। जी हाँ दोस्तों, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के समय में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। किसी ने कोई बात कही और हमने बिना जांचे आगे बता दी, किसी वीडियो में कुछ देखा और उसे सच मान लिया, किसी संदेश में कोई दावा आया और हमने उसे परिवार या गांव के दूसरे लोगों तक भेज दिया, ऐसे समय में मुझे नहीं पता कहना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इसकी मुझे पक्की जानकारी नहीं है, फिर जांच कर सकते हैं, क्योंकि गलत जानकारी को पूरे विश्वास से आगे बढ़ाने से बेहतर है श्रोता साथियों कि थोड़ी देर रुक जाइए। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। सही जवाब देने के लिए कभी कभी पहले सही सवाल पूछना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी काम पर गया, उसे एक काम दिया गया, उसे तरीका नहीं पता। अगर वह पूछता है भैया ये कैसे करना है तो वह सीख जाएगा, लेकिन उसे डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, कि इसे इतना भी नहीं आता, तो वह बिना समझे काम कर सकता है और गलती हो सकती है। इसलिए किसी नए काम में सवाल पूछना कमजोरी नहीं जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति सीखना चाहता है वह

मुझे नहीं पता और फिर आगे जोड़ सकता है, बताइए मैं सीखना चाहता हूँ। श्रोता साथियों, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर राह का हिसाब हो ये जरूरी तो नहीं, कभी रुक कर पूछ लेना भी सफर का हिस्सा है। मुझे नहीं पता कहना कोई किस्सा नहीं, जो झिझक कर छुप रहा वह वही रह गया, जो पूछ कर चला वह आगे बढ़ गया। ज्ञान की पहली सीढ़ी यही है दोस्त, जो नहीं आता उसे सीखने का साहस रखना।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो मनीषा, जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए, सुबह आँख खुलती है और मोबाइल में नेटवर्क ना हो, बिजली नहीं है, पानी की नियमित आपूर्ति बंद हो जाए, बाजार बंद है, ऑनलाइन भुगतान नहीं हो रहा, वाहन चलाने के लिए ईंधन आसानी से उपलब्ध नहीं है, दुकानें बंद है और बाहर से आने वाली चीजों की आपूर्ति रुक गई है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपना एक दिन बिना इन सुविधाओं के गुजार पाएंगे? आज की हमारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द है। एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर है।
0: जी हाँ,
1: तो आज जानेंगे कि आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है और आत्मनिर्भरता आखिर है क्या। ये सारी बातें रहेंगी मनीषा हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। लेकिन जो शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाते हैं कार्यक्रम के पहले गीत से, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि अगर सुबह उठते ही हमारी मोबाइल की स्क्रीन बंद हो, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई बंद है, गैस उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और एटीएम और ऑनलाइन की जो सारी व्यवस्था है वो ठग है, बाजार बंद है और वाहन भी नहीं चल रहे हैं, न कोई ऑनलाइन खाना मंगवाया जा सकता है, न किसी को तुरंत संपर्क किया जा सकता है और न श्रोता साथियों घर के बाहर निकलना आसान है। सिर्फ एक दिन के लिए यदि हमारी रोजमर्रा की सारी जो आधुनिक सुविधाएं होती है श्रोता साथियों वो बंद हो जाए तो क्या हम अपना जीवन है वो सामान्य तरीके से जी पाएंगे?
1: बिल्कुल।
0: यह सवाल जागृति जी केवल असुविधाओं का नहीं है बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है।
1: जी हाँ मनीषा, जैसे कि आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो आज की हमारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द है कि एक दिन के लिए अगर सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर है। श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि हमें आधुनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सुविधाएं उपलब्ध न हो तब भी हम अपनी बुनियादी जरूरतों को समझदारी, कौशल, स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक सहयोग

0: पूरा करने की क्षमता रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब बात आती है कि आखिर आत्मनिर्भरता होती क्या है। तो मनीषा, आत्मनिर्भरता हमारे जीवन की वो क्षमता है जिसमें हम हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते हैं।
1: जी हाँ।
0: भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हमें पता हो कि हमारे घर और आसपास कौन कौन सी खाद्य चीजें उपलब्ध है।
1: बिल्कुल।
0: पानी के मामले में इसका अर्थ है कि पानी का संरक्षण करना और जरूरत के समय उसके वैकल्पिक स्रोतों की जानकारी होना। स्वास्थ्य के मामले में है कि प्राथमिक उपचार और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होना भी आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि समस्या आने पर घबराने के बजाय समाधान खोजने की क्षमता रखना भी आत्मनिर्भरता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम तकनीकी और सुविधाओं से घिरे हुए हैं।
0: जी हाँ।
1: बिजली से लेकर श्रोता साथियों, इंटरनेट तक, मोबाइल के हर डिजिटल भुगतान, हम छोटे बड़े कार्य है वो मोबाइल से ही करते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। अगर ये सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सुविधाओं ने हमारा जीवन आसान बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमें पारंपरिक कौशल है जागृति जी, उनसे भी दूर कर दिया है। इसलिए श्रोता साथियों, यह कल्पना हमें स्वयं से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर देती है। क्या हम सुविधाओं के अभाव में भी श्रोता साथियों अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है?
0: बिल्कुल। जैसा कि मनीषा आपने कहा कि किस तरह से हम हमारे मतलब कि जीवन में इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है या नहीं, तो हमारे श्रोता साथियों को कुछ उदाहरण के तौर पर हमारे बताना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर एक दिन बिजली ना हो तो हम क्या करें। आज हमारी जिंदगी बिजली पर बहुत निर्भर है। पंखा, कूलर, फ्रिज, मोबाइल चार्जिंग, टीवी, इंटरनेट, पानी की मोटर, बहुत सारी हमारे घर में ऐसी चीजें हैं मनीषा जो बिजली से जुड़ी हुई है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन क्या हमारे घर में ऐसा कोई विकल्प है जिससे हम कुछ समय बिना बिजली के गुजार सकते हैं? क्या हमें पता है कि घर में टॉर्च कहाँ रखी है? क्या हमारे पास जरूरी सामान व्यवस्थित रखा है? क्या हमें पता है कि बिजली न होने पर पानी की व्यवस्था कैसी होगी? पुराने समय में लोग सीमित साधनों के बावजूद अपने दिन की जो जरूरतें थी वो पूरी करते थे।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास संसाधन कम थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन स्थानीय ज्ञान और व्यवहारिक कौशल बहुत ज्यादा था। इसीलिए श्रोता साथियों, आधुनिक सुविधा के साथ साथ पुराने उपयोगी ज्ञान को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी की सहायता की आवश्यकता ही हमें ना पड़े। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और समाज में एक दूसरे के सहयोग से ही जो समाज है वो चलता है। आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ है साथियों कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को समझना, संकट के समय स्वयं निर्णय लेना, उपलब्ध संसाधनों में हम सही उपयोग कितना कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय उसका समाधान हम कैसे खोज सकते हैं। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जागृति जी वो होता है जो सुविधाएं कितनी भी कम हो फिर भी अपने जीवन में वो संतुष्ट रहता है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर हैं। ये बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी श्रोताओं, आपके साथ कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत भी करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हम बात कर रहे हैं कि एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने हमारे श्रोता साथियों से कहा था कि आत्मनिर्भरता आखिर क्या है, इसको लेकर बातचीत की थी। साथ ही हमने जाना था कि अगर एक दिन बिजली ना हो तो क्या होगा। वहीं अगर पानी की बात करें तो श्रोताओं, पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर एक दिन नल में पानी आए तो हमें तुरंत समझ आता है कि पानी की कीमत क्या है। हमारे गांव में कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी और अन्य पारंपरिक जल स्रोत केवल पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि सामुदायिक जीवन का यह हिस्सा भी थे। आज जरूरत है कि हम पानी को केवल इस्तेमाल करने वाली चीज न समझे, बल्कि बचाने वाली जिम्मेदारी भी समझे। हम देखते हैं कि घर में पानी का अनावश्यक बहाव रोकना, वर्षा जल का संरक्षण करना, खेत में पानी का सही उपयोग करना और स्थानीय जल स्रोतों की देखभाल करना, ये सभी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हमारे पास श्रोता साथियों मिक्सर है तो हमें हाथ से मसाला पीसना नहीं आता।
0: बिल्कुल।
1: वॉशिंग मशीन है श्रोता साथियों तो हाथ से कपड़े धोने की आदत ही वो कम होती जा रही है। गैस चूल्हा है साथियों तो पारंपरिक तरीके से भोजन पकाने का जो ज्ञान था वो बहुत ही कम लोगों के पास बचा है। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि मोबाइल है तो हमने लोगों के नंबर है वो याद नहीं रहते। पहले के समय में हम देखते थे कि हमारे घर में मोबाइल कम रहते थे तो एक दूसरे को फोन नंबर ही वो याद रहते थे।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, इंटरनेट है तो छोटी छोटी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। ऑनलाइन खोज कर लेते हैं, कुछ भी काम होता है, जो भी सवाल होता है या कुछ जरूरत होती है तो ऑनलाइन हम देख लेते हैं। तो श्रोता साथियों, सवाल यह है कि क्या इसके हमें इनके विकल्पों को पूरी तरह से भुला देना चाहिए या ये हमारे जीवन को और आसान बना सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, जैसा कि आपने कहा कि ये विकल्प हमें भुलाने तो नहीं है, अगर हम इन विकल्पों को भूल जाएंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। जैसा कि श्रोता साथियों हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें अगर हम जिस पर आत्मनिर्भर है वो चीजें बंद हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मनीषा, एक दिन के लिए बाजार ही बंद हो जाए, जैसे कि पानी के बारे में बात की, बिजली के बारे में बात की, यही अगर बाजार की बात करें तो बाजार बंद हो जाए तो क्या हमारे घर में इतना अनाज है कि परिवार अपना भोजन तैयार कर सकता है। पहले जमाने में हम देखते थे कि लोग ड्रमों में गेहूं, चावल, ये सब साल भर का अनाज भर कर रखते थे। आज हम देखते हैं कि हमें जितना खाना होता है महीने का उठा कर लाते हैं, और जब महीने भर में कभी ऐसी कोई बात आ जाती है कि बाजार बंद हो गए तब हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। या जैसे कि कोरोना काल हुआ था तब भी हमारे बाजार बंद थे, तब हम सोच में, जिनके घर में साल भर का अनाज था उनके तो कोई डर नहीं था, लेकिन जिन लोगों के घर में जो महीने महीने लाते थे या रोज लाते थे उन लोगों के मन में ये डर था कि अगर कल बाजार नहीं खुला तो क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, क्या हम जानते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी मौसमी सब्जियां और स्थानीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। हमारे गांव में पहले घर और खेत के बीच गहरा संबंध था। हम देखते थे मनीषा कि घर में अनाज, दाल, मसाले, सब्जियां और अन्य चीजों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता था। आज हम चाहे तो हमारे घर के छोटे से स्थान पर किचन गार्डन कर सकते हैं, वहां हम फल लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं ताकि हमें हमारे खाने के लिए हमें वो चीज उपलब्ध हो जाए। बाजार बंद हो तब हम बाजार पर निर्भर न रहे। हो सकता है कि कभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम बाजार नहीं जाने के उसमें हो तो उस समय हम हमारे घर के किचन गार्डन में से सब्जियां निकाल सकते हैं, फल निकाल सकते हैं, तो हमें कहीं किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं साथियों जो हमें करनी चाहिए। पहले के जमाने के लोग ये सारी चीजें करते थे तो वो बाजार पर उनकी निर्भरता कम थी। आज हम देखते हैं कि हमारी हर चीज, छोटी से छोटी भी चीज बाजार पर निर्भर हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: आज बाजार और आधुनिक आपूर्ति व्यवस्था ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ हमारी निर्भरता भी बढ़ी है। इसीलिए श्रोताओं, हमें समझना होगा कि बाजार से जुड़ना जरूरी है, लेकिन अपनी बुनियादी जरूरतों की पूरी समझ होना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, बिजली आज हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है।
0: बिल्कुल।
1: सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे जीवन में बिजली की जरूरत होती है। पंखा, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्जर या कंप्यूटर और पानी की मोटर, ये सारी चीजें है वो बिजली से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: यदि एक दिन के लिए श्रोता साथियों बिजली पूरी तरह से बंद हो जाए तो हमें गर्मी या अंधेरे की अधिक परेशानी हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें सोचना चाहिए कि क्या हम पहले के लोग थे वो मोमबत्ती का उपयोग करते थे, लालटेन का उपयोग करते थे, क्या इन सब की जानकारी हमें है? अगर बिजली बंद हो जाती है तो हम इन सब के लिए क्या कर सकते हैं और अपने आगे के लिए हम क्या सोच सकते हैं?
0: बिल्कुल मनीषा, जैसे कि बिजली, पंखा, इन सब के बारे में हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को बताया। जैसा कि आपने कहा कि मोमबत्ती आज कहाँ पड़ी हमें नहीं पता, लालटेन कहाँ पड़ा है हमें नहीं पता, चिमनी कहाँ पड़ी हमें नहीं पता, हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं। आज हमारे घर में इन्वर्टर आ गए हैं, हम सोचते हैं कि लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, इन्वर्टर तो हमारे घर में है। लेकिन श्रोताओं, पहले के जमाने के लोगों को आप देखिए, लाइट जाने पर वो अपनी जो घरेलू चीजें थी वो करते थे, चिमनी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, मोमबत्तियां जलाते थे। हम देखते हैं मनीषा कि आज हमारे घर में ये सब चीजें कहाँ पड़ी हमें पता नहीं है, जैसा कि अभी हमने कहा था। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी दिन लाइट ना आए, हो सकता है कि हमारे घर में जो इन्वर्टर है वो भी बैठ जाए, तब हमें क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में हमें हमारी मोमबत्ती, हमारे लालटेन, हमारी चिमनी का पुनः उपयोग करके हमारे घर रोशन करना चाहिए और इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नए जमाने के लोगों को ये सारी चीजें पता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि क्या हो जाएगा, हम सारी चीजें कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है श्रोता साथियों, अगर हम हमारी आत्मनिर्भरता को थोड़ा सा इन सब चीजों से परे रख कर ये पुरानी चीजों पर आएंगे तो हो सकता है कि हमारा जीवन हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी जी बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग जागृति जी सोचते हैं कि पानी तो नल खोलने पर आने वाली चीज है। यदि श्रोता साथियों एक दिन पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो हमें तुरंत एहसास होगा कि पानी का संग्रहण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या हमारे घर में पीने के लिए पानी, पर्याप्त पानी हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या हम जानते हैं श्रोता साथियों कि कम पानी में देने आवश्यकता होती है उन्हें हम किस तरह पूरी कर सकते हैं? क्या श्रोता साथियों हम पानी की एक एक बूंद के महत्व को समझते हैं? ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों जल का संरक्षण है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल, जैसे कि जल संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं मनीषा, तो जल संरक्षण में हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि साथियों पहले जमाने में न कोई टंकी होती थी, न हम पानी को रख सकते थे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह की न बाल्टी होगी, न टब होंगे, न ड्रम होंगे। पहले जमाने के लोग इन सब चीजों में पानी संग्रह करके रखते थे। जैसे बारिश का पानी आया तो ड्रम रख देते थे बाहर, बाल्टी रख देते थे। आज हम देखते हैं कि बारिश का पानी भी ऐसे ही जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, हम उसे आने वाले समय के लिए बचा कर नहीं रखते। और किसी दिन पानी नहीं आता है, उस दिन हम सोचते हैं कि अरे आज तो पानी नहीं है, इधर भागते हैं, कहीं दूसरी जगह लेने जाते हैं। तो साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पानी बचाना बहुत जरूरी है। अगर आज हम पानी को बचाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा पाएंगे। क्योंकि जो चीजें हमें हमारे पूर्वजों से मिली है वही चीज हमें आने वाले पीढ़ियों को भी सौंपनी है। अगर इन्हें हम यहीं पर व्यर्थ कर देंगे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारी चीजें न रहे। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है और संग्रह करना है, पानी का संग्रह करना है, बिजली को बचाना है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं तो एक रूम में ही पंखा लाइट जलाए, ऐसा ना हो कि हम दूसरे रूम के भी पंखा लाइट चल रहे हो और हमें क्या करना है, बिल ही तो आएगा, बिल भर देंगे, ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। अगर हम जिस रूम में बैठे हैं वहीं का पंखा चलाए और हो सके तो हमें हमारी खिड़कियों को खोल देना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम एसी में रहने लग गए हैं, एसी में रहने के बाद हमारी जितनी भी खिड़कियां हैं उसे हम बंद कर देते हैं और हम खुली हवा ले नहीं पाते। खुली हवा नहीं ले पाते तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हम देखते हैं कि आज तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेरे रखती है। तो श्रोताओं, हम ये कहना चाहेंगे कि आप फ्रेश एयर ले, यानी कि खुली हवा में जाए, ताजगी भरी हवा में जाए, खुली हवा ले, अपने आप को सुबह की सैर करें, शाम की सैर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बाहर की हवा हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि जितना हम एसी वगैरह एसी कूलर में रहेंगे उतना ही हमारे लिए हानिकारक है। हो सके तो हम जितना बाहर जाए, अच्छा खाना खाएं, अच्छे फल खाएं, हमारे शरीर को जितना स्वस्थ रख सकते हैं उतना रखें।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज मोबाइल हमारे हाथ का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: बातचीत, पढ़ाई, काम, मनोरंजन, बैंकिंग, खरीदारी, जानकारी, श्रोता साथियों लगभग हर काम में हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं। एक दिन के लिए श्रोता साथियों अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो शायद

0: बेचैनी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम सोचेंगे कि सोशल मीडिया कैसे चलेगा, संदेश कैसे भेजेंगी, ऑनलाइन भुगतान कैसे करेंगी और जानकारी कैसे प्राप्त करेंगी। लेकिन श्रोता साथियों शायद यही एक दिन हमें यह भी सिखा सकता है कि तकनीकी हमारी सुविधा है, हमारी क्षमता का विकल्प नहीं।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि मोबाइल के बारे में आगे भी हमारे श्रोता साथियों को बताएंगे कि मोबाइल का उपयोग हमें कितना करना है, कैसे करना है, ये बातें निरंतर चलती रहेंगी हमारे साथियों के साथ में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, एक दिन के लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर है इस विषय को लेकर। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि एक दिन के लिए हमारी सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जागृति जी, ऐसे में श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हम सारी मुश्किलों को बहुत आसानी से संभाल सकते हैं। हमें ये समझ आ जाए कि आधुनिक तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान जरूर बनाया है, लेकिन हमारी वास्तविक जो शक्ति है अभी भी हमारे ज्ञान, कौशल, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और हमारी सहयोग की भावना से होती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ श्रोता साथियों सुविधाओं से दूर होना नहीं है, बल्कि सुविधाओं के बिना भी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए हमारी क्षमता है उसे हमें विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए श्रोताओं कि एक दिन आप आसपास की स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, क्या परिवार के लोगों को सामान्य प्राथमिक उपचार की जानकारी है? क्या हमें पता है कि चोट लगने, हल्के जलने या सामान्य आपात स्थिति में शुरुआती स्तर पर क्या सावधानी रखनी होगी? यहाँ आत्मनिर्भरता का अर्थ खुद डॉक्टर बन जाना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ मनीषा ये है कि स्थिति को समझना, घबराना नहीं, सही प्राथमिक कदम उठाना और जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जानकारी लेना। हम देखते हैं कि हमारे गाँव में आत्मनिर्भरता की बात खेती के बिना अधूरी है। किसान केवल अन्न पैदा नहीं करता है श्रोताओं, बल्कि समाज की खाद्य सुरक्षा में वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय बीजों की जानकारी होना, मिट्टी की समझ होना, मौसम की जानकारी होना, पशुपालन, जैविक संसाधनों का उपयोग, पानी का सही प्रबंधन, ये सब ग्रामीण आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर खेती का अर्थ ये नहीं कि किसान आधुनिक तकनीक को छोड़ दे, बल्कि आवश्यकता है कि परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक दोनों का संतुलित उपयोग हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान साथी किस प्रकार खेती को आधुनिक तरीके से मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों कि हम जो खेती करते हैं उसमें हमारे जो पूर्वज थे, पहले के टाइम पे जो खेती करते थे, जो आधुनिक उपाय थे, जो खेत पर खाद, घर पर खाद बनाना, जो आधुनिक सुविधाएं थी उन्हें हम फिर से अपना कर अपने जीवन में है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और नई सुविधाओं के साथ जोड़कर और बेहतर करने का प्रयास हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हम महिलाओं की भूमिका को लेकर बात करें तो साथियों, आत्मनिर्भर परिवार बनाने में महिलाओं की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हम देखते हैं मनीषा कि घर का बजट संभालना, भोजन की योजना बनाना, अनाज और अन्य जरूरी सामान को व्यवस्थित रखना, बच्चों की जरूरत का ध्यान रखना और कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभालना, ये जो सारी बातें हैं वो महत्वपूर्ण कौशल है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मनिर्भरता केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, परिवार के हर सदस्य को अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को भी छोटे छोटे काम सिखाने होंगे, जैसे अपना सामान व्यवस्थित रखना होगा, पानी बचाना होगा, भोजन की बर्बादी रोकनी होगी और जरूरत के समय परिवार की मदद करनी होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर महिलाएं और परिवार के बीच में ये सामंजस्य बैठ गया तो हमारी आत्मनिर्भरता थोड़ी सी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यहीं अब हमारे युवा साथियों की बात करें तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि युवा है वो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर युवा साथी चाहे तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर पुराने जो अनुभव है उन्हें सुन सकते हैं, उनके अनुसार वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम देखते हैं जागृति जी कि हमारे युवा साथियों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, वो चाहे तो अपने बुजुर्गों से ज्ञान ले सकते हैं और पुरानी जो बातें हैं वो लेकर पूरे समुदाय के साथ जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं जागरूक नहीं होते हैं श्रोता साथियों और बातों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोगों को हमारे युवा साथी हैं वो जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे जागृति जी हम देखते हैं कि हमारा समाज ही वो विकास की ओर बढ़ता है और जो लोग नहीं समझते हैं वो भी मतलब समझ कर जो काम करने का प्रयास है वो करने की कोशिश करते हैं और जो बचाने जैसे कि पानी बचाना और बिजली बचाना ये सारे उपाय हैं वो अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने युवाओं के लिए बताया मनीषा, यही गांव की और सामूहिक आत्मनिर्भरता को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो अब सवाल केवल ये नहीं है कि मैं कितना आत्मनिर्भर हूँ, सवाल ये है दोस्तों कि हमारा गांव कितना आत्मनिर्भर है। अगर किसी एक परिवार पर संकट आए तो क्या पड़ोसी उसकी मदद करेंगे? अगर किसी किसान को अचानक मजदूर या उपकरण की जरूरत पड़े तो क्या गाँव के लोग सहयोग करेंगे? अगर किसी परिवार के पास भोजन की कमी हो जाए तो क्या समुदाय उसके साथ खड़ा होगा? यही सामुदायिक आत्मनिर्भरता है। हमारे गाँव की सबसे बड़ी ताकत केवल जमीन और प्राकृतिक संसाधन नहीं नहीं बल्कि आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना भी है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं मनीषा कि आत्मनिर्भरता कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, इसके लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे बदलाव करने होंगे। पहला है स्थानीय संसाधनों को पहचानना, अपने गाँव में उपलब्ध जल स्रोत, खेती, पशुधन, स्थानीय खाद्य पदार्थ, कारीगर और पारंपरिक ज्ञान की जानकारी रखना। दूसरी है जरूरी जीवन शैली कौशल सीखना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो प्राथमिक उपचार, भोजन बनाना, पानी का प्रबंधन करना, घरेलू सामान की देखभाल करना और आपात स्थिति में सही निर्णय लेना हमें सीखना होगा। तीसरी है कि बचत की आदत हम सब में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मनीषा पैसे के साथ साथ पानी, अनाज, ऊर्जा और समय की बचत भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: कहते हैं कि समय अगर एक बार चला गया तो वो लौट कर कभी आता नहीं है। जहाँ संभव हो श्रोताओं, स्थानीय किसानों और छोटे उत्पादकों से हमें जुड़ना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: तकनीक हमारी ताकत बने, हमारी मजबूरी नहीं, ऐसी तकनीक का समझदारी से हमें उपयोग करना होगा।
0: बिल्कुल।
1: सामुदायिक सहयोग बढ़ाना होगा। हम देखते हैं कि गांव में एक दूसरे की मदद करने की परंपरा मजबूत रहती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब हमारा गाँव, हमारा परिवार मजबूत होता है। लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं या एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं तो वही चीज कमजोर पड़ जाती है। तो हमें सामूहिक सहयोग बढ़ाने होंगे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि घर के जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भी ये सारी बातें सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो किस प्रकार दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार हमें साफ सफाई करनी है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ये सारी बातें हैं वो सिखा सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, कहा जाता है कि बच्चे होते ही वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर हम बचपन से ही हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार डालते हैं तो बड़े होकर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इससे हम देखते हैं जागृति जी कि दूसरे बच्चे भी उन बच्चों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर हमें आगे बढ़ाने की प्रयास करने चाहिए।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मनीषा, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो बातें चल रही है ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और हमारी बातें चल रही थी कि किस तरह से हमारी आत्मनिर्भरता को हमें कम करना है। जैसे कि महिलाओं को लेकर हमने बात की थी, गांव की सामूहिक आत्मनिर्भरता को लेकर बात की थी, यही आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना है उसके लिए बात करें मनीषा। तो आत्मनिर्भरता कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, इसके लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे बदलाव करने होंगे।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि स्थानीय गाँव को स्थानीय संसाधनों को पहचानना होगा, जैसे कि अपने गाँव में उपलब्ध जल स्रोत, खेती, पशुधन, स्थानीय खाद्य पदार्थ, कारीगरों, पारंपरिक ज्ञान की जानकारी हमें रखनी होगी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आसपास देखकर सोचिए कि अगर एक दिन बिजली, पानी, बाजार, इंटरनेट और परिवहन जैसी सुविधाएं सीमित हो जाए तो हमारे घर में सबसे बड़ी परेशानी किस चीज की होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्या हमारे घर में एक दो दिन की जरूरी सामग्री व्यवस्थित है? क्या हमारे गांव में ऐसी पारंपरिक संसाधन है जिसका उपयोग आज भी जरूरत के समय किया जा सकता है? क्या हमारे परिवार में बच्चों और युवाओं को रोजमर्रा के जीवन के जरूरी काम सिखाए जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारा गाँव ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है? आप अपनी राय में हमें जरूर बताइए श्रोता साथियों कि आपकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल हमारी बात नहीं, आपकी भी बात है। और कहना चाहेंगे साथियों कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाए, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि दुनिया से जुड़े रहते हुए भी अपने पैरों पर खड़े रहने की क्षमता रखना।
1: बिल्कुल,
0: हमें बिजली चाहिए लेकिन बिजली ना हो तो हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमें मोबाइल चाहिए लेकिन मोबाइल बंद हो जाए तो संवाद खत्म नहीं होने चाहिए। हमें बाजार चाहिए लेकिन बाजार बंद हो तो घर की बुनियादी जरूरतों का प्रबंधन करने की समझ होनी चाहिए। हमें आधुनिक तकनीक चाहिए लेकिन अपने स्थानीय ज्ञान को भूलना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक दूसरे की जरूरत को समझना होगा, क्योंकि संकट के समय केवल पैसा तकनीक ही काम नहीं आता, उस समय काम आता है ज्ञान, कौशल, तैयारी, स्थानीय संसाधन और इंसान का इंसान के साथ खड़ा होना। इसलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछिए श्रोता साथियों कि अगर कल मेरी रोजमर्रा की सुविधाएं कुछ समय के लिए मेरे साथ ना हो तो क्या मैं अपने परिवार और अपने समुदाय के साथ मिलकर परिस्थिति संभाल सकता हूं? अगर जवाब अभी भी पूरी तरह हाँ नहीं है श्रोता साथियों तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भरता कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन सीखी और मजबूत की जाने वाली आदत है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी जरूरतों को खुद समझना, स्थानीय संसाधनों का सम्मान करना, पानी और भोजन की कद्र करना, अपने हाथों से काम करना, नई चीजें सीखना और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देना, मनीषा यही आत्मनिर्भर समाज की असली पहचान है। उम्मीद है हमारी जिंदगी को आसान बनाती है लेकिन आत्मनिर्भरता हमें मुश्किल समय में मजबूत बनाती है। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आत्मनिर्भरता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है, जैसे पानी बचाने से, भोजन की कद्र करने से, अपने काम खुद करने से, स्थानीय संसाधनों को पहचानने से और जरूरत के समय एक दूसरे का हाथ थामने से। याद रखिए श्रोताओं, जिस समाज को हर छोटी जरूरत के लिए बाहर का सहारा चाहिए वो सुविधाओं से समृद्ध हो सकता है, लेकिन मजबूत तभी बनेगा जब उसके लोग अपने भीतर समाधान खोजने की क्षमता विकसित करेंगे।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आज से सिर्फ ये न सोचे कि अगर सुविधाएं बंद हो गई तो क्या होगा, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या सीख सकती हूँ, ऐसा क्या बचा सकती हूँ और ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मुश्किल समय में मैं अपने परिवार और अपने समुदाय के काम आ सकूं। क्योंकि असली आत्मनिर्भरता तब दिखाई देती है जब सुविधा साथ छोड़ देती है मनीषा, लेकिन हौसला, हुनर और एक दूसरे का साथ हमारे साथ बना रहता है।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोताओं आइए सुविधाओं पर निर्भर रहने वाले समाज नहीं बल्कि सुविधाओं का समझदारी से उपयोग करने वाला और

0: जरूरत पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा होने वाला समाज बनाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम तकनीकी और सुविधाओं से घिरे हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: बिजली से लेकर इंटरनेट तक, मोबाइल से लेकर डिजिटल भुगतान तक, और घर के छोटे बड़े कामों से लेकर श्रोता साथियों हमारी निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि एक दिन के लिए हमारी सारी सुविधाएं बंद हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उस समय श्रोता साथियों हमें कुछ नया जानने के अवसर मिलते हैं। हमें समझ में आएगा कि आधुनिक तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान जरूर बनाया है, लेकिन हमारी वास्तविक शक्ति अभी भी हमारे ज्ञान, कौशल, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और सहयोग की भावनाओं में है। आत्मनिर्भरता का अर्थ सुविधाओं से दूरी बनाना नहीं है साथियों, बल्कि सुविधाओं के बिना अपने जीवन की जो मूल आवश्यकता है उन्हें संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश विकसित करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो हमारे श्रोता साथियों को अंत में यही कहना चाहेंगे कि सुविधाएं हमारी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन आत्मनिर्भरता हमें मुश्किल समय में मजबूत बनाती है। इसीलिए जरूर है कि हम अपने हुनर, संसाधनों और एक दूसरे के सहयोग को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि असली आत्मनिर्भरता वही है जब सुविधाएं कम हो फिर भी हमारा हौसला और हमारा साथ कम न हो। इसी सोच के साथ आज की हमारी बात को हम यही विराम देना चाहेंगे, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हाजिर होते हैं तो आपको आपके ही द्वारा भेजे गए नए नए नगमों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी सिलसिला श्रोता साथियों हमारा आपके साथ इसी तरह बना रहेगा। जैसा कि आपकी फरमाइश का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से चलता है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और इसी बीच श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए नए हैं और आप भी अपने फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM के साथ में, तो ज़रूर सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आपको SMS करना है हमारे WhatsApp नंबर पर, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं साथियों वहां का भी आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है WhatsApp नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर में फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और अपने पसंदीदा नगमे हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि सुबह की 11 बज चुके हैं, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश का गीत हमारे बीच रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से आया है। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं इलो इलो। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशाज सिंधे जी, शिंदे, कृष्णा घोड़के जी, ऋषि शिंदे जी और भी हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान जुड़ रहे हैं दोस्त बागपत से, जगमोहन सिंह बजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भाती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधर नूतन, रामनंद कश्यप दिल्ली से, रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है इलू इलू। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था सौदागर फिल्म का इलू इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू। इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, बताना चाहूँगी फूल पत्थर के फूल। गीत के बोल है, कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, नारायण खर्चे।

कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी। गंजुडवारा से शमशिल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, अनमर अंसारी जी। रघुवीर नगर से श्रोता साथी हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब, लड्डू जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी। नई बस्ती गंजुडवारा से जुड़ रहे हैं मोहन यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौशिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं हम दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से आपको ले जाते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों फराह, गीत के बोल हैं और इस दिल में क्या रखा है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोकिशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। हमारे साथी जुड़ रहे हैं बोड़खड़ा पितरामल से, विनोद मोड़त, देहांत जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, लीक सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मोड़त जी। अमरावती से जुड़ रहे हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, हीरामन शेंडे जी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। यवतमाल से हैं मंजू लोखंडे, रामहरि लोखंडे, सूरज लोखंडे, सुरमित लोखंडे जी। जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी गुणवंश श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित समूह, मानस राज। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं और इस दिल में क्या रखा है, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम, गीत के बोल है अखा इंडिया जानता है मैं तुम पे मरता हूँ। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, मुंडा टोला डूरी लोहारा से हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम। हमारे साथी हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से भी जुड़ रहे हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं डापकी रोड अकोला से सुशीला व देवी मंदुरकर, सदन मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये अखा इंडिया जानता है मैं तुम पे मरता हूँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, अखा इंडिया जानता है मैं तुम पे मरता हूँ, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान, गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसाना, मैं देवी ऋतिकादित्य कसाना अदावली मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से हैं अफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, अनवर जी, लुबाना अंसारी, आलिया अंसारी जी। और भी दोस्त खेल बाजार पानीपत से जुड़ना चाह रहे हैं, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लड़कल मल्होत्रा, नानकसल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डोकू भाविका सिक्का, जाखोत राजस्थान से है समुदाय खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटे, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, ताजवुद अंसारी, गुलाम शाह भी रही, महराज जहां। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है भर दो झोली मेरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है जिसमें गीत के बोल है आवारापन बंजारापन। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं उमाली महाराष्ट्र से अनूप कुमार उद्वत पाटिल जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, आपको मैं नाम बताना चाहूंगी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुटवाड़ा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुरू रजना प्रियाली, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। और भी हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं खुपटी से हैं बंडू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ जी, बंडू पोपलगढ़ जी। साथी जुड़ना चाह रहे रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। जुड़ना चाह रहे मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी, आशा देवी, राघव जी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कणहाकर राही, सरिता गमहाड़कर, सिद्धांत गमहाड़कर, एकांश गमहाड़कर और अर्जुन प्रिंस गमहाड़कर टुक टुक जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन, सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं ये। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जेवीएम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। और भी साथी जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी जी। येताला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी तृप्ति जायसवाल जी। इसी बीच हमारे साथी हैं जो इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। रोहिदास चौक पंडापुर से हैं सुनेता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुर सहारनपुरी से। फिल्म का नाम है नेहना, गीत के बोल हैं हमको तो जान प्यारी है। इस गीत की फरमाइश करता है जॉन डिकिस्टो, रोजे डिकिस्टो, पॉल डिकिस्टो, विलिस डिकिस्टो। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भोपाल के राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, पुणे प्रसिद्धि हीरामन शिंदे, प्रतिभा जी गुड़ाने। इस बीच जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत की बोल ही हमको तो जान से प्यारी है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली कोलगांव से। फिल्म का नाम है लीला, गीत के बोल हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल जी निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नारायण इगली, सोपान इगली, आशीष मेहकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका, वाणी जी थांदी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है लीला, गीत के बोल हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झारखंड से। फिल्म का नाम है सुहाग, गीत के बोल हैं गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी सादिया जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं वासीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी कुतलेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सुहाग, गीत के बोल हैं गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है शिवानी चौक कटनी से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ये जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है अनिल ताम्रेकार, अमर ताम्रेकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रेकार, रजत रंजक, सजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश, सोम्या और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुदय राज यादव, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख, प्रणाली जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बुलंदशहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अजान अब्बासी, अभांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंडी सेंटर 5 सूर्य नगर जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रजेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरियाणा से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत की बोली है परदेसी परदेसी। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाश पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, श्याम की टी, वंदना की टी, कार्तिक जी की टी। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार मारवाड़ा भिलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है धनुरे तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से इरशद खान, शायरा खान, रफ्यू खान, सबरीन बेगम, शाबाज खान, शेफ खान, ईशान जी खान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गीत के बोल ही परदेसी परदेसी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल ही चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इसी भी जुड़ना चाह रहे पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुमची नेताम। इस गीत की अनुरोध करता है पटिया कला दुर्ग से संजीव कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू, सुजिता जी शाहू। अकोट से जुड़ना चाह रहे हैं विनायक भेंडे, मंगलाजी भेंडे, शुभम जरिए, पवन जरिए जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजा, नरगिस जी खातून। इस गीत की अनुरोध करता है मोहली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमी सुमो और मानसी राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं झुमरी से अभय कुमार, प्रियंका जी, रिया जीटा, आयुषी, अभिनंद बाबू, मुनी देवी और जय प्रकाश जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजरद्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं सोनम और अनामिका जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भेड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, राम निवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, बेबी गुदलेश जी।

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित थावा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मन राय सुझाव आली सको हमारे अणपता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अना फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाईन बोनु, आ तो हती आपने आसनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपने बोन अंजलि नु राम राम राम राम।

जय गुरु भाई बहनों, आप सब मेहरबान स्वागत करो हूँ हमारी आज की हाजिर सभा में। आप सब हम रे हो आप सामुदायिक रेडियो वॉकेट रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ अपने हाथी अपनी पूर्ण अंजलि पारेश्वर ने आज वार शनिवार ने तारीख 19 सितंबर 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों, हमें देख ही रहा कि अपने स्टूडियो की घड़ी में हाजिर ना पास वाकी के हैं। तब आपने शुरुआत करा हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। भाई बहनों, आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती के पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जोड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इना में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्तिमय गीता ने अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ेंगा हमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज में। आ कार्यक्रम आप हम रही सकोगा ठीक 5:30 PM माते प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने जागृति भट्ट ने हाथ दे। इस कड़ी में

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने,

दर्शनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे, जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है, प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में भी असरदार होती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हर चीज बड़ी हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटी सी बात भी दिल में बड़ी जगह बना लेती है। प्यार थोड़ा हो लेकिन सच्चा हो, कोशिश छोटी हो लेकिन लगातार हो, और अच्छाई छोटी हो लेकिन दिल से हो, तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहना चाहेंगे साथियों कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, समाज में बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जिंदगी में सफल होने के लिए रोज घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में कई बार बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी छोटी चीजें अपना असर छोड़ती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले बातचीत की शुरुआत कर चुके हैं साथियों, और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में ही असरदार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि खुश करने के लिए हमें लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम किसी कार्य में मन लगाना चाहते हैं या किसी नई उपलब्धि को पाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन वास्तविक जीवन में ये सच नहीं है दोस्तों। कई बार किसी उदास इंसान से बस इतना पूछ लेना कि तुम ठीक हो, किसी थके हुए व्यक्ति से ये कह देना कि तुम आराम कर लो, मैं यह काम कर देता हूँ। माता पिता को बिना किसी खास मौके के धन्यवाद कहना, दोस्त की बात बिना बीच में टोके सुन लेना और किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी मदद कर देना, जागृति जी, ये सभी चीजें बहुत असर करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हर दिन अपने लक्ष्य के लिए बस थोड़ा सा समय निकालना, ये चीजें देखने में तो काफी छोटी है लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि प्यार को हमेशा बड़े बड़े शब्दों, महंगे उपहारों या बड़े वादों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असली प्यार अक्सर बहुत साधारण चीजों में भी दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं है श्रोताओं कि हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी कभी किसी की बात को ध्यान से सुन लेना भी प्यार है, किसी की परेशानी समझने की कोशिश करना भी प्यार है, गलती होने पर माफ कर देना, किसी की सफलता पर दिल से खुश होना और मुश्किल समय में उसका साथ देना, ये सभी प्यार के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली रूप है।
0: जी हाँ।
1: युवाओं के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दोस्ती हो, परिवार हो, भाई बहन का रिश्ता हो या समाज के साथ जुड़ाव का रिश्ता। कशिश, हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े प्रयास की हमें जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: बस एक छोटा सा संदेश कि अपना ख्याल रखना किसी के पूरे दिन को बेहतर बना सकता है श्रोताओं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही कभी एक फोन कॉल किसी को यह महसूस करा सकता है कि हम अकेले नहीं हैं।
1: जी हाँ।
0: कभी किसी की उपलब्धि पर कहा गया एक छोटा सा शब्द कि मुझे तुम पर गर्व है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो रिश्तों में गहराई लाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें कोई बड़ा काम करना होगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़े स्तरों से हो ये जरूरी नहीं होता जागृति जी।
1: जी हाँ।
0: अगर हमारे युवा साथी अपने घर के आसपास कचरा नहीं फैलाते हैं तो यह भी पर्यावरण के लिए एक योगदान है उनके द्वारा। अगर वह अपने दोस्तों को कचरा सही जगह डालने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह भी उनके द्वारा एक कदम आगे बढ़ना है दोस्तों।
1: जी हाँ।
0: अगर वह किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अपनी पुरानी किताबें दे देते हैं तो ये भी समाज के लिए एक अच्छी पहल है।
1: बिल्कुल।
0: अगर वह किसी बुजुर्ग की सड़क पार करने में मदद करते हैं और किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या किसी परेशान व्यक्ति को कुछ मिनट ध्यान से सुन लेते हैं दोस्तों, तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हमारी अच्छाई बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे युवा साथियों को ये याद रखना चाहिए कि अच्छाई कभी छोटी नहीं होती। हमारा छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा जीवन सपनों, उत्साह और संभावनाओं से भरा होता है, ये हम सभी जानते हैं। श्रोताओं, इस उम्र में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई समाज के लिए काम करना चाहता है, तो कोई अपनी प्रतिभा को पहचान बनाना चाहता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार बड़े लक्ष्य हमें डरा देते हैं, हम सोचते हैं कि इतना बड़ा सपना है, मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगी या कर पाऊंगा।
0: जी जी।
1: यहीं पर छोटी छोटी कोशिशों की ताकत सामने आती है श्रोताओं।

0: अगर हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो रोज सिर्फ कुछ नए शब्द हमें सीखने होंगे। अगर हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत कुछ पन्नों से करनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: अगर हमें कोई कौशल सीखना है तो रोज थोड़ा समय देना होगा। अगर हमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो एक साथ पूरी किताब देखकर घबराने के बजाय रोज एक छोटा सा लक्ष्य तय करना होगा, क्योंकि पहाड़ भी एक एक कदम चलकर पार किया जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें कर ही रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में ही अच्छी लगती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें हम आगे करते रहेंगे और भी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी प्यार और अच्छी चीजें थोड़ी मात्रा में भी असरदार होती है विषय को लेकर। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि छोटी मात्रा में प्यार भी दिल को भर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम जान पा रहे थे कशिश की अच्छाई की मात्रा नहीं, नियत हमारे सामने मायने रखती है। युवाओं के लिए छोटी कोशिशों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ जानते हैं कि 1% सुधार भी बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपने जीवन में अक्सर अचानक बड़ा बदलाव चाहते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज से सब कुछ बदल जाएगा, आज से मैं पूरी तरह अनुशासित रहूंगा या रहूंगी, आज से मैं कई घंटों पढ़ाई करूंगा और आज से मैं अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसे कुछ बातें हैं जो वो हमारे मन में चलती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरी है कि हम अपने ऊपर असंभव दबाव डालने के बजाय छोटे और लगातार सुधार पर ध्यान दें। जैसे कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ, आज एक अच्छी आदत सीखने का प्रयास करूंगा या करूंगी, आज एक गलत आदत को थोड़ा कम करना है, आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, यही छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कदम कदम से मंजिल करीब आती है।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रिश्तों में ये बात बहुत लागू होती है। किसी अपने के लिए साल में एक बार बहुत बड़ा काम कर देना और बाकी समय उसे नजरअंदाज कर देना शायद उतना प्रभावशाली नहीं रहता जितना रोज की छोटी छोटी परवाह रहती है।
1: बिल्कुल।
0: सुबह पूछ लेना कि नाश्ता किया, परीक्षा के समय कहना कि तुम मेहनत कर रहे हो, अच्छा ही करोगे, किसी दोस्त के परेशान होने पर कहना कि अगर बात करना चाहो तो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, घर में माता पिता के काम में थोड़ी मदद कर देना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाती है श्रोताओं।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि रिश्ते बड़े मौकों से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी परवाह से बनते हैं।
1: बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात करें डिजिटल दौर में छोटी सी संवेदनशीलता की, तो दोस्तों आज जैसा कि सोशल मीडिया से हम सभी जुड़े हुए हैं,
0: जी हाँ,
1: हमारे पास बातचीत की कई साधन हैं, लेकिन कई बार वास्तविक संवाद कम हो रहा है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हम किसी की फोटो पर लाइक कर देते हैं लेकिन ये नहीं पूछते कि वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। हम किसी की सफलता देखकर उसे बधाई तो दे देते हैं लेकिन उसकी मेहनत समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते।
0: जी हाँ।
1: इसलिए डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी वास्तविक संवेदनशीलता बहुत मायने रखती है।
0: बिल्कुल।
1: किसी दोस्त की पोस्ट पर सिर्फ इमोजी भेजने के बजाय युवा साथियों कभी फोन करके ये पूछिए कि तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, हो सकता है सामने वाला सिर्फ एक बातचीत का इंतजार कर रहा हो। अच्छाई की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वह अक्सर आगे बढ़ती रहती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा ने रास्ते में किसी व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति के मन में भी दूसरों की मदद करने की भावना पैदा हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: ठीक उसी प्रकार किसी शिक्षक ने विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया तो वही विद्यार्थी आगे चलकर किसी दूसरे युवा को प्रेरित कर सकता है। जागृति जी।
0: जी हाँ, हम कह सकते हैं कशिश कि किसी ने हमें मुश्किल समय में सहारा दिया हो। हो सकता है श्रोता साथियों कि किसी और के मुश्किल समय में हम उसके लिए भी वही सहारा बन जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए हमारी छोटी सी अच्छाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। अच्छाई एक ऐसी रोशनी है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि शुरुआत कौन करेगा। अपने मोहल्ले में स्वच्छता की शुरुआत कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच नशे और गलत आदतों से हम दूर रहने की बातचीत कर सकते हैं, गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए छोटी पहल कर सकते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जरूरतमंद व्यक्ति की छोटी सी मदद कर सकते हैं। कशिश, ये छोटी छोटी जो शुरुआतें होती है लेकिन जब ये हजार युवा इन्हें अपनाते हैं तो यही छोटी बातें बड़े सामाजिक बदलाव का रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही हम देखते हैं कि कई युवा भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियों को भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब मेरा लक्ष्य पूरा होगा तब जिंदगी का आनंद लूंगा। लेकिन जीवन केवल बड़े अवसरों का नाम नहीं है युवा साथियों। एक कप चाय के साथ परिवार से बातचीत, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सुबह की ताजी हवा, बारिश की खुशबू, किसी पसंदीदा गाने को सुनना और किसी किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, ये दोस्तों छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सुंदर बनाती है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए कि खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो छोटी सी मुस्कान बनकर हमारे पास ही बैठी हुई होती है।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, किसी को खुश करने के लिए हमेशा बड़ा उपहार जरूरी नहीं, सच्चे शब्द ही काफी होते हैं। रोज थोड़ा सीखना कभी कभी बहुत सीखने से ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: रिश्तों में बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाह ज्यादा मायने रखती है। समाज में बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े अभियान से नहीं, हमारी छोटी आदतों से भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी को दिया गया प्रोत्साहन उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। हम अपने लक्ष्य की ओर रोज एक छोटा सा कदम भी बढ़ाएंगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही अच्छाई करने के लिए सही समय का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करनी है क्योंकि जिंदगी इन्हीं पलों से बनती है। हमारी एक मुस्कान, एक मदद या एक अच्छा शब्द किसी के दिन को बदल सकता है कशिश। इसलिए हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि याद रखिए श्रोताओं, असर चीज की मात्रा से नहीं उसकी सच्चाई और निरंतरता से पैदा होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज की इस बातों से हमारे युवा साथी इतना ही समझ पाए हैं कि जीवन में हर चीज का बड़ा होना जरूरी नहीं होता। प्यार थोड़ा हो लेकिन सच्चा हो, मदद छोटी हो लेकिन जरूरत के समय हो, कोशिश छोटी हो साथियों लेकिन लगातार हो, और अच्छाई छोटी हो लेकिन दिल से हो, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है आपका एक अच्छा शब्द किसी का आत्मविश्वास लौटा दे। हो सकता है दोस्तों कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाए।
0: जी हाँ,
1: और ये भी हो सकता है कि आपकी रोज की छोटी मेहनत आपको उस मंजिल तक पहुँचा दे जिसका आपने कभी सपना देखा होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपनी छोटी कोशिशों को कम मत समझिए, क्योंकि नदी की ताकत उसकी एक बूंद में नहीं बल्कि लगातार बहती बूंदों में होती है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि छोटी सी कोशिश को कभी छोटा मत समझना, छोटी सी अच्छाई को कभी व्यर्थ मत समझना, प्यार थोड़ा हो तो भी दिल से निभाना, क्योंकि जिंदगी में बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी बातों से ही मुस्कुराना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि बड़ा करने की चाह अच्छी है लेकिन छोटी शुरुआत करने से मत डरिए, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत कभी न कभी एक छोटी सी कोशिश से ही शुरू होती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि पोषण माह के इस खास अवसर पर आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत रहने वाली है बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में। श्रोता साथियों, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि खेल, शारीरिक गतिविधियाँ, अनुशासन और अच्छी आदतें भी जरूरी होती है। तो आज जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में कि माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में। इस विषय को समझने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं स्काउट गाइड, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से स्काउट गाइड की गतिविधियों के साथ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का किस तरीके से संबंध है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की बातचीत को। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी।
0: तो सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मैं डॉक्टर दीपेश शर्मा सीओ स्काउट हूँ, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड, जिला मुखलवासवाड़ा, पूरा जिला इसके स्काउटिंग के अंतर्गत देखता रहता हूँ।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्काउट गाइड की गतिविधियों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जो चीजें होती हैं उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि स्काउट गाइड की गतिविधि में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान कैसे रखा जा सकता है।
1: मैडम अपन स्काउटिंग की अगर बात करते हैं तो स्काउटिंग में चीजों पे बेसिकली बात होती है, क्योंकि स्काउटिंग जो है वो कबूल बुल से लेके और रोवर रेंजर और फिर एडल्ट लीडर, यानी जब तक आदमी स्थिति पर है तब तक के लिए वो स्काउटिंग करता रहे, तो इन चार चीजों को देखते हुए करते हैं कि चरित्र, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सेवा। तो उसमें एक विषय आज जैसा आपका स्वास्थ्य है तो स्काउट गाइड गतिविधियों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का कितना महत्व है, यह प्रश्न था। स्वास्थ्य और पोषण मैडम अपन देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की नींव है।
0: बिल्कुल।
1: और स्काउट गाइड की अधिकांश गतिविधियां जो भी हैं, जिसमें हाइकिंग हो, कैंपिंग हो, ड्रिल हो गई, ट्रेकिंग हो गई, ये सब चीजें वो हैं जिनमें मैदानी खेल और अत्यधिक शारीरिक श्रम की मांग ये करती हैं। यदि बच्चे का पोषण सही होगा तो वो सब चीजें कर पाएगा, नहीं तो वो जल्दी थकान की और थकने लग जाएगी, उसका ध्यान भटकेगा, गतिविधियों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए पोषण तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि पोषण की आवश्यकता बच्चों को रहती रहती है। बच्चों में सहन शक्ति इससे बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बच्चा खेल से ही बन पाता है।
0: बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य से बन पाता है। जी
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पोषण का महत्व हर गतिविधि में होता है, यही जो बच्चे नियमित रूप से गतिविधियां करते हैं उनके भोजन में किन चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है।
1: मैडम अगर बच्चा नियमित रूप से खेल को या फिर यूं कह सकते हैं कि इन चीजों में नियमित रूप से अगर भाग लेता है तो उसके पोषण में सबसे पहली जो चीज है उसकी डाइट, डाइट को देखने की पर्याप्त आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में अपन बात कर रहे हैं बांसवाड़ा में, तो यहाँ अधिकांश ये देखा जाता है कि यहाँ कुपोषण का काफी रहता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उनको मिले, ऊर्जा के लिए उनको रोटी, दलिया, चावल, आलू इत्यादि सब्जियां वो कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से लें। प्रोटीन में मांसपेशियों की मरम्मत या मजबूती के लिए अपन कह सकते हैं कि दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीजें वो लें। क्योंकि यहाँ अपन जब देखते हैं तो पशुधन तो है लेकिन बच्चे आज भी जैसे हमारे यहाँ कैंपों में इनमें बच्चे आते हैं तो दूध को अवॉइड करते हैं, दलिया अपन उनको दे तो उसको अवॉइड करते हैं, हरी सब्जियां आ रही अपन दे तो उसको अवॉइड करते हैं। तो ये चीजें काफी चीजें हैं जो उनको आवश्यकता है, उनको लेना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स के लिए अपन बात करें क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी बढ़ेगी जब आदमी हरी सब्जियां लेगा, मौसमी फल वगैरह ये चीजें लेगा। आज अपन देखते हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग रोटी सब्जी जरूर खा रहे हैं लेकिन वो इस हिसाब से नहीं खा रहे कि सब्जियां क्या होनी चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दूध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हरी सब्जियों के साथ में फल वगैरह वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस तरह की काफी चीजें हैं।
0: बिल्कुल।
1: लिक्विड में भी अपन बात करें तो ना वो पानी पूरा पी पा रहे हैं, ना छाछ पीते हैं, ना गर्मियों के टाइम पे कोई शिकंजी वगैरह या नारियल पानी वगैरह, जिस तरह की चीजें अपन सब लोग ध्यान में रखते हैं वो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और यहाँ एक चीज अपन ये भी देख सकते हैं कि खाना भी टाइम पे नहीं खाते हैं, तो समय पर भोजन अगर नहीं करेंगे तो खाली पेट किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होती और ना पौष्टिक खाना मिल पाता है ना फिर वो भोजन की उसकी पूर्ति हो पाती है।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो क्या अच्छा पोषण बच्चों को शारीरिक गतिविधि के लिए ज्यादा ऊर्जा देता है?
1: बिल्कुल मैडम, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर भोजन शरीर के लिए फ्यूल का काम कर रहा है, गाड़ी में अगर अच्छा पेट्रोल होगा, अच्छा ईंधन होगा तो गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। ठीक वैसे ही अगर शरीर में बच्चा कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट, प्रोटीन वगैरह अगर ढंग से लेगा तो उसकी शारीरिक ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, कुशलतापूर्वक वो काम कर पाएगा, संतुलित पोषण से बच्चों का स्टेमिना बढ़ता है, लंबे समय तक वो सक्रिय रह सकते हैं, थकावट, चक्कर आना, इन तरह की समस्याओं से वो दूर रहेगा।
0: बिल्कुल। तो सर स्काउट गाइड की जो आउटडोर गतिविधियां होती है उस दौरान बच्चे के खाने पीने की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: आउटडोर गतिविधियां मैडम हमारे जो बेसिकली रहती हैं उसमें एक तो कैंपिंग होता है और हाइकिंग होता है। इस दौरान बच्चा थोड़ा सा आउट ही रहता है, नहीं बच्चा बाहर ही रहता है, तो इसमें हम लोग जो बेसिकली ध्यान रखते हैं कि उसको हल्का और पौष्टिक भोजन मिले, जिसको पचने में आसानी से और कम ऊर्जा में वो चीजें पच सके, जैसे भुने हुए चने, गुड़ दे दिया उनको, सूखे मेवे वगैरह दे दिया, वगैरह शाम को जैसे चाय के साथ में, स्नैक्स के साथ में उनको फ्रूट्स वगैरह दे दिया, ताजा और सुरक्षित भोजन उनको मिले। ये चीज हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लो अपन अमूमन क्या करते हैं, घरों में जब अपन रहते हैं तो जैसे शाम को कोई रोटी या कुछ घर में बच गया तो उसको अपन सवेरे छाछ वगैरह के साथ खा लेते हैं, लेकिन कैंपों में और इस तरह की चीजों में हम लोग उनको अवॉइड करते हैं कि जिस टाइम का खाना बना वो उसी टाइम पे काम में आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाइड्रेशन के लिए उसको साफ पानी पीता रहे, बच्चों को बार बार कहा जाता है कि आप पानी की बोतल साथ में रखें, पानी बच्चा खुद पीता रहेगा और खुद पानी पिएगा तो उससे वो ठीक भी रहता है। और जंक फूड वगैरह से इनसे परहेज करें, जहां भी कैंपिंग होती है आसपास में ये ध्यान हम जरूर रखते हैं कि आसपास में कोई दुकान वगैरह शॉप वगैरह नहीं हो, क्योंकि आजकल की जो भी पीढ़ी है वो पैकिंग फूड खाने का शौक रखती है तो वो शरीर के लिए इतना लाभदायक नहीं जितना अपन ताजा और स्वच्छ बना हुआ जो अपन लेते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है।
0: बिल्कुल। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि गाँव में मिलने वाले स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए कितने उपयोगी है।
1: मैडम गाँव का मैं यूँ कह सकता हूँ रहन सहन और खान पीन दोनों ही देखा जाए तो पौष्टिक भी है और वहाँ शुद्ध भी मिलता है। पारंपरिक खाद्यान्नों में जैसे मक्का हो गया, इधर की साइड में तो अपन मक्के की बात कर सकते हैं कि मक्का हो गया, सत्तू वगैरह या गुड़ वगैरह या इस तरह का चीजें ले सकता है, मोरिंगा, आंवला, गवारफली, इस तरह की जो चीजें हैं इनसे भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं। ये चीजें खाए तो आदमी ठीक रहता है, तरोताजा रहेगा, रसायन मुक्त रहेगा, क्योंकि अपन देखेंगे कि जितनी भी अब आजकल बन रही है सब्जियां वगैरह जो अपन उगा रहे हैं वो प्रेस्टीज वगैरह उसमें डाल रहे हैं, वो रासायनिक उससे हो रहा है। कोशिश करें कि गांव में ये क्या चीजें शुद्ध मिलती है तो वहाँ ज्यादा ठीक रहता है।
0: बिल्कुल। तो सर क्या स्काउट गाइड की गतिविधि के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए चीजें सिखाई जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल मैडम, ये उनको अपन जैसे स्काउट गाइड में एक होता है कुकरी बेज, कुकिंग बेज जिसको अपन बोलते हैं, उसमें द्वितीय सोपान के लेवल पे ये चीज आ जाती है। उसमें बच्चों को पूरा उसका जो सिलेबस होता है, कंटेंट जो होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं कि आपके संतुलित थाली क्या होगा, संतुलित थाली में आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, खाना कैसे बनेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि जैसे भले ही वो चपाती बना रहा है लेकिन वो बनाने के दौरान भी अगर उसको ज्यादा पकाएगा तो चपाती में जो पोषकता है वो खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही सब्जी को अगर वो ज्यादा उबाल लेगा तो उससे वो खत्म होगा। तो ये सारी चीजें उसमें रहती है। तो बच्चा वो कुकिंग बेस लगभग सभी लोग लेते हैं, यूं मान के चले अपन कि आप यूं मान के चले कि लगभग 60-70% बच्चे कुकिंग बेस वगैरह लेते ही लेते हैं, तो उसमें वो सब चीजें सीख पाता है।
0: बिल्कुल। तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कमजोर जो बच्चे होते हैं, कम वजन वाले, उनकी गतिविधियों में जब हम उन्हें शामिल करते हैं तो किन बातों का विशेष हम उन्हें ध्यान रख पाते हैं?
1: फिजिकली फिटनेस जरूर मैडम ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई कमजोर बच्चा हो और उसको अपन ज्यादा टफ टास्क दे देंगे तो वो उस चीज को नहीं कर पाता है। तो हम ध्यान रखते हैं कि उसकी धीमी शुरुआत हो, उन पर अचानक बहुत अधिक शारीरिक दबाव नहीं डाला जाए, गतिविधियों में तीव्रता धीरे धीरे उसके हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत उस पर ध्यान देना पड़ता है, जो भी इंस्ट्रक्टर या जो परीक्षक होता है उसको कह दिया जाता है कि इस तरह के बच्चे की जो भी है उनको आप अलग से चिन्हित करें और उनका खान पीन भी थोड़ा सा चेंज करें और उनको बार बार मोटिवेशन देते रहें। कई बार बच्चा खड़े खड़े थकने लग जाता है या हाइक में जाता है वहां थकने लग जाता है, तो उसको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि इतनी दूर तो अपन आ गए, अब तो थोड़ा सा ही रहा है, थोड़ा और चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। इस तरह से उसको मेंटली अपन सपोर्ट करेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे वो लोग कर लेते हैं। और अंत में अगर कोई ज्यादा ही इस तरह का मामला हो कि बच्चा बार बार थक रहा है या इस तरह की चीजें हो रही है तो कोशिश ये भी की जाती है कि डॉक्टर्स वगैरह को बता दिया जाता है या उन बच्चों को भी कह दिया जाता है कि बेटा आप जाने के बाद में जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है वहाँ एक बार आप थोड़ा सा जरूर दिखाएं ताकि उनको डॉक्टर्स वगैरह का भी परामर्श वगैरह मिल सके।
0: बिल्कुल। यही सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि लड़कियों के अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्काउट गाइड जैसी गतिविधियाँ कैसे मददगार हो सकती हैं?
1: यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो मैडम मैंने लगभग मेरे 15 साल के सर्विस पीरियड में देखी है कि यहाँ बच्चियों में कुपोषण ज्यादा है। यहाँ आए दिन पेपर के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से ये सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिलता है कि 2-3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, कई बार माँ को भी संकट रहता है, बच्चे की भी डेथ हो जाती है, कई तरह की समस्याएं हैं। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा जब भी कोई कैंप वगैरह रहता है तो कोशिश की जाती है कि फीमेल स्टाफ के माध्यम से उनको वो तरह सब तरह की चीजें समझाई जाए और उनको बताया जाए कि एनीमिया में जो खून की कमी रहती है उसको कैसे अपन बचा जा सकता है। स्काउट गाइड की जो बैठकें होती हैं उनमें पोषण संबंधी जागरूकता और आयरन से संबंधित भरपूर भोजन के लिए उनको बताया जाता है। शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए उनको आउटडोर गतिविधियों में लड़कियों का भी शारीरिक स्टेमिना और आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता बढ़ सके, ये चीजें उनको बताई जाती है। स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए उनको जो भी मासिक धर्म वगैरह जो है उसमें किस प्रकार से वो अपना ध्यान रखें, किस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखें, उसके बाद में उनको क्या खान पीन में चीजें ऐड करनी है, वो सब चीजें उनको बताई जाती है। और जो बेसिकली जिसपे काम किया जाता है वो है यहाँ रूढ़िवादिता को तोड़ना, क्योंकि एक जनरली थिंकिंग है कि लड़कियां लड़कों के समान मैदानी और चुनौती पूर्ण काम नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ की सबसे बड़ी एक समस्या है। उनको बताया जाता है कि बेटा जब लड़कियां राष्ट्रपति बन सकती हैं, राज्यपाल बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो क्यों नहीं आप लड़कों के बराबर खड़ी हो सकती हैं, ऐसा करके उनको मेंटली भी मोटिवेट किया जाता है।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो माता पिता बच्चों के पोषण और शारीरिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में किस तरीके से घर पर चीजों का ध्यान रख सकते हैं?
1: इसमें मैडम मैं यूं कह सकता हूँ कि यहाँ अपने बांसवाड़ा के लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा शिक्षा का भाव है। जो पुरानी पीढ़ी थी उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा का भाव रहा और उसका खामियाजा अभी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल में या अपने पास में या स्काउटिंग में बाद में आएगा, उसकी जो पहली आवश्यकता है वो परिवार है। और अगर माता पिता शिक्षित होंगे, माता पिता को अगर जानकारी होगी तो वो सब चीजें बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी लड़की हो या लड़का हो उसका पहला रोल मॉडल उसकी मम्मी या पापा होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: घर का बना ताजा खाना उन बच्चों को दे, उनको बार बार बताएं कि बेटा बाहर की चीजें आपको नहीं खानी है, रंग बिरंगी थैलियों में दिखने वाली चीजें केवल मन को आकर्षित करती हैं लेकिन शरीर के लिए इतनी पौष्टिक नहीं है। उनको कोशिश ये भी करें, ये वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि अपन स्वास्थ्य पे ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन अभी स्क्रीन टाइम सबका काफी ज्यादा हो रहा है। ये चीज भले अपन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी देख लें आप लोग, या जो भी जहां भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, स्क्रीन टाइम काफी हो रहा है, लेकिन वो तो चलो ऑफिशियल कामों से कर रहे होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, और इसमें माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज बच्चा थोड़ा सा भी रोने लगता है तो मम्मी पापा उसको तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कोशिश करें कि उनकी स्क्रीन टाइमिंग करें जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो आराम से उस चीज के लिए देख सके। भोजन का भी एक समय उनका निर्धारित हो कि इतनी बजे उनको नाश्ता देना है, इतनी बजे खाना देना है, क्योंकि ये आदतें जो है वो एक बार बन जाती है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ में चलेंगी और वो बच्चा अपने परिवार के साथ में ठीक ठाक से रह पाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवाया है, तो यही अंत में बच्चों और अभिभावकों के लिए आप पोषण और स्वास्थ्य को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। काफी बार पढ़ा है लेकिन देखने को काफी कम मिलता है, क्योंकि अगर इस पे अपन काम करेंगे तो ये चीजें हो पाएंगी। और बच्चों के लिए संदेश सीधा यही है कि मोबाइल और स्क्रीन की इस दुनिया से बाहर निकलें, मैदान में उतरें, खेलें और पसीना बहाएं, जंक फूड की जगह अपनी पारंपरिक थाली फल और दूध दही को अपनाएं। आज की आपकी शारीरिक सक्रियता और सही पोषण ही कल आपके उज्ज्वल सफल और ऊर्जावान भविष्य की नींव है। और अभिभावकों के लिए मेरा निवेदन होगा, संदेश तो क्या कि बच्चों का असली विकास केवल किताबों और अंकों, क्योंकि अपन देखते हैं कि आज केवल मार्कशीट से बच्चों का आकलन हो रहा है,
0: जी जी।
1: तो उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों का असली विकास केवल किताबों और अंकों से नहीं बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। उन्हें घर का शुद्ध स्थानीय पौष्टिक आहार दें, उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और स्काउट गाइड जैसे मूल्य आधारित गतिविधियों से जोड़ें, बच्चों को एक सक्रिय अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली का उपहार दें ताकि वो जीवन में आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और जीवन में व्यस्त रहें।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: मैडम आपके माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा, इससे न केवल स्काउटिंग बल्कि बांसवाड़ा ग्रामीण उसमें बच्चों के और बच्चियों के दोनों के लिए स्वास्थ्य पे भी इसका काफी अच्छा असर होगा। धन्यवाद आपका।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि बच्चों का अच्छा पोषण और उनकी सक्रियता दोनों उनके स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है। पौष्टिक भोजन बच्चों को ऊर्जा देता है, वहीं गतिविधियां उन्हें सक्रिय, आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने में मदद करती हैं। इसलिए बच्चों की थाली में पौष्टिक भोजन के साथ उनकी दिनचर्या में थोड़ा सा समय खेल, गतिविधियों और प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए भी जरूर रखें। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेना चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
2: टिक टक टक टिक टक।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बात रहने वाली है हमारी परंपराएं, हमारी विरासत संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी इमारतों, सड़कों और आधुनिक सुविधाओं से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके रीति रिवाजों, लोकगीतों, लोक कथाओं, भाषा, पहनावे, खान पान, त्योहार, कला और जीवन के तरीकों से होती है। यही परंपराएं पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम कहां से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और अंजलि, जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि ऐसे गाँव की जहाँ लोक गीत तो है लेकिन उन्हें गाने वाला कोई न हो, जहाँ पारंपरिक कला तो है लेकिन उसे बनाने वाले हाथ न हो, जहाँ त्योहार तो मनाए जाए लेकिन उनके पीछे की परंपरा और भावना किसी को मालूम ही न हो। ऐसा समाज आधुनिक तो दिखाई दे सकता है अंजलि, लेकिन भीतर से अपनी पहचान खो चुका होता है। इसलिए हमारी परंपराएं केवल अतीत की याद नहीं दिलाती बल्कि हमारी सांस्कृतिक पूंजी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, यही बात करें, परंपराएं हमारी पहचान है। तो श्रोता साथियों, परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में बड़ों का सम्मान करना, अतिथि का स्वागत करना, सामूहिक रूप से त्योहार मनाना, विवाह और अन्य सामाजिक अवसरों की परंपराएं, ये सभी हमारे सामाजिक जीवन को मजबूत बनाती है। हमारे गाँव में आज भी अनेक ऐसी परंपराएं दिखाई देती है जागृति जी, जिनमें सामूहिकता, सहयोग की भावना छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: पहले किसी परिवार में कोई शुभ अवसर होता था तो पूरा पड़ोस उसके साथ खड़ा हो जाता था। खेत में काम हो, घर में समारोह हो या किसी जरूरतमंद परिवार की मदद, लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाते थे। आज हम देखते हैं कि जीवन की गति तेज हो गई है, परिवार छोटे हो रहे हैं और लोगों के पास समय कम है। ऐसे समय में उन परंपराओं को बचाना और भी जरूरी हो जाता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग क्षेत्रों के अपने लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कलाएं हैं। राजस्थान और वाकड़ अंचल की बात करें तो यहाँ के लोकगीतों, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र और हस्तकलाओं में स्थानीय जीवन की सुंदर झलक दिखाई देती है। लोकगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, उनमें खेती, ऋतु, विवाह, प्रकृति, रिश्ते और सामाजिक जीवन की कहानियाँ छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: एक लोकगीत कई बार वो इतिहास बता देता है जो किसी किताब में दर्ज नहीं होता। इसी तरह श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि पारंपरिक कला बनाने वाले कारीगर अपने हुनर के साथ कई पीढ़ियों का अनुभव आगे बढ़ाते हैं। अगर नई पीढ़ी इन कलाओं को सीखने में रुचि नहीं लेगी तो धीरे धीरे ये कलाएं केवल संग्रहालयों तक सीमित रह सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है कि हम स्थानीय कलाकारों को मंच दे, उनके काम को सम्मान दे और उनके उत्पादों को खरीदकर उनकी कला को जीवित रखने में सहयोग करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ भाषा और बोली के संरक्षण की बात करें तो हमारी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: भाषा में हमारी संस्कृति, भावनाएं, इतिहास और सामूहिक स्मृतियाँ सुरक्षित रहती है। स्थानीय बोलियाँ किसी क्षेत्र की पहचान होती है। किसी बोली का एक शब्द कई पीढ़ियों के अनुभव को अपने भीतर समेटे होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, आज कई बच्चे अपनी स्थानीय बोली बोलने में संकोच करने लगे हैं। हमें ये समझना होगा कि अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोली बोलना पिछड़ापन नहीं बल्कि अपनी जड़ों पर गर्व करना है।
0: जी हाँ।
1: घर में बच्चों से स्थानीय भाषा में बातचीत करना, लोक कथाएं सुनाना, पारंपरिक कहावतों और लोक गीतों को सीखना, ये छोटे कदम भाषा संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि बुजुर्ग हमारी चलती फिरती विरासत है। हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के बड़े सदस्य नहीं होते, वे अनुभव और परंपराओं के जीवित स्रोत हैं।
0: जी हाँ।
1: उनके पास खेती के पुराने तरीकों, मौसम की पहचान, स्थानीय पौधे, खान पान, लोक कथाएं, गीतों, सामाजिक परंपराओं से जुड़ा ऐसा ज्ञान होता है जो किताबों में आसानी से नहीं मिलता। आज आवश्यकता है कि बच्चे और युवा अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी बातों से सुने।
0: जी हाँ।
1: उनके अनुभवों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनकी कहानियों को लिखा जा सकता है और उनके पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह एक पीढ़ी का अनुभव दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता रहेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे त्योहार हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई सामाजिक, प्राकृतिक या आध्यात्मिक संदेश तो जुड़ा ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता, त्योहार केवल नए कपड़े पहनने, मिठाई खाने या सजावट करने का अवसर नहीं होता है। ये हमें परिवार, समाज, प्रकृति और आपसी सहयोग से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जरूरत है कि हम त्योहारों की परंपराओं को समझे और उनके सकारात्मक संदेश को अगली पीढ़ी तक जरूर पहुँचाए, साथ ही पर्यावरण और समाज का ध्यान रखते हुए उत्सव मनाए। जब त्योहार हमारी संस्कृति के साथ साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी देते हैं, तब उनका महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, आज हम जान रहे हैं हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने त्योहारों की असली भावना क्या है उसके महत्व को जाना, यही बात करते हैं आधुनिकता और परंपरा में संतुलन की।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, परंपराओं को बचाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हर पुरानी चीज को बिना सोचे अपनाते रहें। समय के साथ समाज बदलता है और बदलाव जरूरी भी है। हमें अपनी परंपराओं में छिपे अच्छे मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और उन बातों को छोड़ना चाहिए जो भेदभाव, अंधविश्वास या किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है।
1: जी हाँ।
0: यानी कि जागृति जी, हमें परंपरा को जड़ता नहीं बल्कि सकारात्मक विरासत के रूप में देखना चाहिए। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम अपनी संस्कृति को और मजबूत कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: पुराने लोकगीतों की रिकॉर्डिंग, लोक कलाओं की वीडियो, बुजुर्गों की कहानियाँ को डिजिटल संग्रह और स्थानीय इतिहास का दस्तावेजीकरण, ये सभी हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के आधुनिक तरीके हैं।
1: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से आधुनिकता और परंपरा में संतुलन जरूरी है, यही अगर बात करें बच्चों को संस्कृति से किस तरह से जोड़ना है, युवाओं को संस्कृति से किस तरह से जोड़ना है, तो साथियों जैसा कि विरासत संरक्षण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा अगर अपनी संस्कृति को समझेंगे तो उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाना आसान हो जाएगा। हम देखते हैं अंजलि कि सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कला को नई पहचान दी जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: युवा अपने गांव और क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत पर छोटे वीडियो बना सकते हैं, स्थानीय कलाकारों की कहानियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप दे सकते हैं। साथ ही बच्चों की बात करें तो बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनने का अवसर मिले, वे स्थानीय लोकगीत सीखे, गांव के पुराने स्थानों और परंपराओं के बारे में जाने। साथ ही स्कूलों में स्थानीय संस्कृति पर गतिविधियां तो आयोजित होती है, तो अगर बच्चे अपनी संस्कृति को समझेंगे तो वे बड़े होकर उसे सम्मान भी देंगे और सुरक्षित भी रखेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें गांव और समुदाय की जिम्मेदारी की, तो श्रोता साथियों, किसी भी विरासत को बचाने के लिए सामुदायिक प्रयास जरूरी है। गांव में पुराने जल स्रोत, पारंपरिक भवन, स्थानीय पेड़ पौधे, कला और सांस्कृतिक स्थल हैं, तो उनकी देखभाल सामूहिक रूप से की जानी चाहिए। गांव की बैठकों में स्थानीय विरासत पर चर्चा हो सकती है, बुजुर्गों से जानकारी लेकर उसका दस्तावेज बनाया जा सकता है, स्थानीय कलाकारों को कार्यक्रमों में मंच दिया जा सकता है। जब पूरा समुदाय अपनी विरासत को अपनी जिम्मेदारी मानता है तब संरक्षण का काम मजबूत और स्थायी बनता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति भी हमारी विरासत है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे त्योहार, लोकगीत, खेती और जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे संबंध दर्शाते हैं।
1: जी हाँ।
0: पेड़, तालाब, नदियाँ, जंगल, पहाड़ और स्थानीय जैव विविधता केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वे हमारी आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति है। इसलिए विरासत संरक्षण का अर्थ केवल गीत और कला बचाना नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति की रक्षा करना भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि विरासत को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं होती, शुरुआत तो हमें घर से ही करनी होती है। हम घर में अपनी भाषा बोले, बच्चों को अपनी परंपराओं के बारे में बताएं, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करें और पारंपरिक व्यंजनों को अगली पीढ़ी को सिखाएं। पुराने गीतों और कहानियों को रिकॉर्ड करें, जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को बताया। साथ ही गांव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों की देखभाल करें। ये जो छोटे छोटे प्रयास है वो मिलकर बड़ी विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रोताओं, कहना चाहेंगे कि हमारी विरासत हमें याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए हमें अपनी जड़ों को पीछे नहीं छोड़ना है, नई तकनीक को अपनाना है, नई सोच को अपनाना है, नई दुनिया से जुड़ना है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोकगीत, अपनी कला, अपनी परंपराओं और अपने मूल्यों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि जिस समाज को अपनी जड़ों का पता होता है वही अपने भविष्य की दिशा बेहतर ढंग से तय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हमारी परंपराएं किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: यह पीढ़ियों से हमें मिली जिम्मेदारी है, हमारे पूर्वजों ने इन्हें संभाल कर हमें सौंपा और अब इन्हें सुरक्षित रखना हमारी बारी है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी विरासत को केवल त्योहारों और विशेष अवसरों पर याद नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि अपने दैनिक जीवन में उनका सम्मान करेंगे। विरासत को बचाना अतीत को रोकना नहीं है बल्कि अतीत की अच्छी सीख को भविष्य तक पहुंचाना है। आज हम अपनी भाषा बोलेंगे और अपने लोकगीत गाएंगे, अपनी कला को सम्मान देंगे, बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सकेंगी कि यह हमारी पहचान है, यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी विरासत है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी विरासत को समझें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि विरासत केवल हमें मिली हुई चीज नहीं है
1: विरासत वो जिम्मेदारी है जिसे हमें संभाल कर आगे सौंपना है।
2: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी विरासत को केवल अतीत की निशानी बनाकर नहीं रखना है, बल्कि उसे वर्तमान में जीवित और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। हमारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी श्रोता साथियों, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उतनी ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत रही है, आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
2: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागा रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉगर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारी, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, हमारे जीवन से जुड़े उन सवालों की जिनके जवाब कई बार हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कभी किसी ने कोई सवाल पूछा और आपको उसका जवाब नहीं पता था? शायद आपने तुरंत कुछ कह दिया होगा, शायद अंदाजा लगाकर जवाब दे दिया होगा या फिर चुप हो गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सहज होकर कहा मुझे नहीं पता? साथियों, कई लोगों के लिए ये तीन शब्द बोलना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं पता तो सामने वाला उन्हें कम समझदार मानेगा, कोई उन्हें कमजोर समझेगा, कोई अनपढ़ तो कोई अनुभवहीन। लेकिन साथियों, जरा सोचिए कि क्या हर सवाल का जवाब जानना ही समझदारी है, या यह स्वीकार कर पाना कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा, यह उससे भी बड़ी समझदारी है। तो आज के सपनों की उड़ान में हम इसी छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा करेंगे कि मुझे नहीं पता कहने में शर्म कैसी। बातें ढेर सारी होंगी लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं मुझे नहीं पता कहने में शर्म कैसी। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे समाज में अक्सर ये धारणा बन जाती है कि जो व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे दे वही ज्यादा बुद्धिमान है। कक्षा में शिक्षक ने सवाल पूछा और बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, उसे डर लगता है कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। किसी बैठक में कोई नई बात सामने आई, हमें समझ नहीं आई, फिर भी हम सिर हिला देते हैं जैसे सब समझ आ गया हो। मोबाइल में कोई नया फीचर आया, हमें चलाना नहीं आता, लेकिन हम किसी से पूछने में झिझकते हैं। किसी सरकारी योजना का नियम समझ नहीं आया, फिर भी हम पूछने के बजाय अनुमान लगा लेते हैं। किसी मशीन को चलाना नहीं आता, फिर भी दूसरों के सामने पूछने में संकोच होता है। यही झिझक श्रोता साथियों कई बार हमें सीखने से रोक देती है, जबकि सच्चाई यह है कि जिसे यह पता है कि उसे क्या नहीं पता, उसके सीखने का रास्ता वहीं से शुरू होता है। एक व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे नहीं पता, तो श्रोता साथियों यकीन मानिए कि वो अपनी कमी स्वीकार नहीं कर रहा होता, वह अपने लिए सीखने का दरवाजा खोल रहा होता है। इसी के साथ अगर एक छोटी सी बात जाने तो मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी किसान को किसी नई कृषि तकनीक के बारे में बताया गया, वह तकनीक उसके लिए बिल्कुल नहीं। सामने वाला पूछता है समझ आया, अगर किसान केवल इसलिए हाँ कह देता है कि लोग उसे कम जानकारी वाला न समझे, तो हो सकता है कि वह आगे चलकर उस तकनीक को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दे। लेकिन अगर वह कहता है कि नहीं मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, तो क्या इसमें कोई शर्म की बात है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यही तो समझदारी है कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति उसी क्षण सीख रहा है। जो व्यक्ति पूछने में संकोच करता है वह अपनी अज्ञानता को छिपाता है, जो व्यक्ति पूछ लेता है वह अपनी अज्ञानता को ज्ञान में बदलने की शुरुआत करता है। कि हम देखते हैं बहुत सी बार हम सभी के साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई बात हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखकर हम सिर हिला देते हैं, हाँ आ गई समझ में, ये वर्ड भी हम कह देते हैं। लेकिन अगर हम सवाल पूछें, उसे अच्छे से समझें, तो उस चीज का हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यही बात आती है कि बच्चों के लिए मुझे नहीं पता बहुत जरूरी क्यों है। तो श्रोता साथियों, बच्चों के जीवन में तो यह बात और भी महत्वपूर्ण है। बच्चा हर दिन कुछ नया सीखता है, उसे दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। वो पूछता है आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, पौधे बड़े कैसे होते हैं, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता दिखाई देता है, बिजली कैसे आती है। कभी कभी बड़े लोग बच्चे के सवाल पर हंस देते हैं, इतना भी नहीं पता। धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है। यही हमें सावधान होने की जरूरत है। बच्चों को यह कहने की बजाय कि तुम्हें यह भी नहीं पता, की जगह हमें कहना चाहिए कि मुझे अभी इसका पूरा जवाब नहीं पता, चलो फिर पता करते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य बच्चे के अंदर बहुत बड़ी चीज पैदा कर सकता है और उसके सीखने की हिम्मत यहीं से शुरू होती है। तो श्रोता साथियों, बातें कार्यक्रम में जैसा कि बहुत अच्छी चल रही है कि मुझे नहीं पता कहने में किस तरीके का संकोच, तो ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बड़े होने के बाद हम सवाल पूछना क्यों छोड़ देते हैं। तो श्रोता साथियों, बचपन में हम बिना झिझक पूछते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर एक डर पैदा होने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। यही डर हमें कई जगह रोकता है। हमें रास्ता नहीं पता लेकिन पूछेंगे नहीं। किसी दस्तावेज को समझ नहीं पा रहे लेकिन पूछना नहीं है। किसी काम का तरीका नहीं आता लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। नई तकनीक समझ नहीं आई फिर भी कहेंगे हाँ आती है। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी की कमी से ज्यादा लोगों की राय का डर सताता है। लेकिन श्रोता साथियों, जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में नया होता है। श्रोता साथियों, एक किसान खेती जान सकता है लेकिन मोबाइल की नई तकनीक न जानता हो। एक युवा मोबाइल अच्छी तरह चला सकता है लेकिन खेती की बारीकी न जानता हो। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान रख सकता है लेकिन किसी मशीन की जानकारी कम हो सकती है। एक बुजुर्ग जीवन के अनुभव से बहुत कुछ जानते हैं लेकिन डिजिटल जानकारी उनके लिए नहीं हो सकती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का हर क्षेत्र में जानकार होना संभव नहीं होता है। साथियों, केवल मुझे नहीं पता कहना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद हमें कहना चाहिए कि लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता पर बात खत्म हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। फिर हम किसी जानकार से पूछ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं, किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं, विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपनी जानकारी की कमी को स्वीकार करके उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, सामुदायिक जीवन में तो सवाल पूछना और भी जरूरी है। गांव में बैठक हो रही है, किसी योजना की जानकारी दी जा रही है, किसी स्वास्थ्य विषय पर चर्चा हो रही है, खेती से संबंधित नई जानकारी दी जा रही है, बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, महिलाओं के किसी समूह में नई गतिविधि समझाई जा रही है। अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो उसे पूछना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का सवाल कई लोगों के काम आ सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सवाल शायद सिर्फ मुझे नहीं पता, बाकी सबको पता होगा, और बाद में पता चलता है कि कमरे में बैठे आधे से ज्यादा लोगों को उस बात के बारे में पता ही नहीं है, बस किसी ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए दोस्तों, एक सवाल कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरे समुदाय को जानकारी दे सकता है। यही बात करें कि गलत जवाब देने से बेहतर है कि सही सवाल पूछना। जी हाँ दोस्तों, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के समय में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। किसी ने कोई बात कही और हमने बिना जांचे आगे बता दी, किसी वीडियो में कुछ देखा और उसे सच मान लिया, किसी संदेश में कोई दावा आया और हमने उसे परिवार या गांव के दूसरे लोगों तक भेज दिया, ऐसे समय में मुझे नहीं पता कहना बहुत जरूरी हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इसकी मुझे पक्की जानकारी नहीं है, फिर जांच कर सकते हैं, क्योंकि गलत जानकारी को पूरे विश्वास से आगे बढ़ाने से बेहतर है श्रोता साथियों कि थोड़ी देर रुक जाइए। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। सही जवाब देने के लिए कभी कभी पहले सही सवाल पूछना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी काम पर गया, उसे एक काम दिया गया, उसे तरीका नहीं पता। अगर वह पूछता है भैया ये कैसे करना है, तो वह सीख जाएगा, लेकिन उसे डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, कि इसे इतना भी नहीं आता, तो वह बिना समझे काम कर सकता है और गलती हो सकती है। इसलिए किसी नए काम में सवाल पूछना कमजोरी नहीं जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति सीखना चाहता है वह सवाल करेगा, और जो व्यक्ति सिर्फ अपनी छवि बचाना चाहता है वह कई बार गलती छिपाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने बच्चों और युवाओं को यह नहीं सिखाना चाहिए कि तुम्हें हर सवाल का जवाब आना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन हासिल करके हम कह दें कि अब मुझे सब आता है। दुनिया बदल रही है, काम बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, शिक्षा के तरीके बदल रहे हैं, रोजगार के अवसर बदल रहे हैं। ऐसे में सीखने वाला व्यक्ति वही है जो अपनी जानकारी को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह कह सकता है ये बात मुझे नहीं पता, और फिर आगे जोड़ सकता है
बताइए, मैं सीखना चाहता हूँ। श्रोता साथियों, हर सवाल का जवाब हो यह जरूरी तो नहीं, हर राह का हिसाब हो यह जरूरी तो नहीं, कभी रुक कर पूछ लेना भी सफर का हिस्सा है। मुझे नहीं पता कहना कोई किस्सा नहीं, जो झिझक कर छुप रहा वह वही रह गया, जो पूछ कर चला वह आगे बढ़ गया। ज्ञान की पहली सीढ़ी यही है दोस्त, जो नहीं आता उसे सीखने का साहस रखना।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हुं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज इस सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मन राय सुझाव आली शको हमारे अड़ा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाईन बोनु, आ तो हती आपणे आजनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नु राम राम, राम राम।